FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। आप सभी सुधी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज़ादी का ये दिन समस्त देशवासियों के लिए मंगलमय हो। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने

0: भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग,

0: जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम आराधना का। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आराधना के इस अंक में आइए सुनते हैं कुछ देश वंदना। पहले देश, फिर हम। मातृभूमि के चरणों में वंदन। देश है ममता, देश है शक्ति, देश ही है जीवन की अभिव्यक्ति। जिस धरती ने हमें जीवन दिया, उसका ऋण कभी न चुका पाएंगे। प्रण करते हैं इस पावस दिवस पर, जीवन भर हम इसका मान बढ़ाएंगे।

गूंज रहा है विश्व में भारत का नगमा, चमक रहा आसमान में प्यारा तिरंगा अपना। आओ करें स्वागत इस दिन का, ये शुभ दिन है हमारा अपना।

तिरंगे की शान में हर दिल मुस्कुराए, भारत वतन का नाम जग में ऊंचा हो जाए। वीरों के बलिदान का सदा हम मान करें, अपने वतन अपने तिरंगे का हरदम हम सम्मान करें।

आओ मिलकर शीश नवाएं उन शहीदों के आगे जिन्होंने भारत की आज़ादी पर खुद को लुटाया है। उनके बलिदान के कारण ही स्वतंत्रता दिवस का ये पावस दिन हमारे पास आया है।

0: समोसरों में गए इस देश वंदना के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है मिर्चा के उन्नत खेती। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, आज खेती की बात मा लेके आए हवन मिर्चा के उन्नत खेती के बारे मा जानकारी। मिर्चा के उपयोग हमन चटनी बनाए मा, अचार बनाए मा और साग सब्जी के सेवाद बढ़ाए बर करथन। एकर उपयोग हमन सलाद के रूप मा घलाव करथन। कैप्सेसिन जोन रीथे तेकर सेतीर मिर्चा हर चुप्पुर लगथे। एकर उपयोग दवाई बनाए बर घलाव करे जाथे, जेकर ले कैंसर रोधी है के तुरते दर्द ला दूरिया करे वाला हवय, खून ला पतला करे वाला के दिल के बीमारी ला रोके वाला है, ए जम्मो मा मदद मिलथे। देश विदेश में एकर खेती हर बढ़िया ले होते। हमर देश मा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हमर राज्य तमिलनाडु एति बर बढ़िया ले होते। आवाओ जाना थन कि कौन प्रकार ले विधि ला चेत मा करके मिर्चा के बढ़िया खेती ला ले सकिन। संगवारी हो, जलवायु के घलाव चेत रखे बर पड़ते। 18 ले 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला जलवायु हर मिर्चा के खेती बर बने माने जाते। माटी के बात करें तो हल्का ले भारी माटी में हमन मिर्चा ला लगा सकथन। फिर बढ़िया पानी निकासी वाला व्यवस्था रहे, वो भुइयां हर बने माने जाते। मिर्चा के अच्छा विकास बर माटी के जौन पीएच मान है तेन हर 6 ले 7 हर बढ़िया होते। प्रजाति के बात करें संगवारी हो, तो मिर्चा के अब्बड़ कन प्रजाति आते, जेमा पंजाब सिंदूरी, पंजाब तेज, पंजाब ज्वाला, पंजाब सदाबहार, अरका मेघना, अरका श्वेता, काशी अरली, काशी सुर्ख, काशी अनमोल, ए नाव के किस्म मन बढ़िया होते। ऐसने हमन ला चेत रखना है भुइया के तैयारी बार, तो 2 ले 3 पैत जोताई करना जरूरी होते। काबर के माटी जौन है तेन हर बढ़िया भुरभुरा हो जाते, जेकर ले जौन मिर्चा के पौधा ला लगाथन तो ओकर बढ़वार हर ज्यादा होते। संगवारी हो, मिर्चा लगाए के जौन बेरा है तेन हर अभी के बेरा हर सुघर माने जाते। कतार ले कतार के दूरिया ला 75 सेंटीमीटर के और पौधा ले पौधा के दूरिया ला 45 सेंटीमीटर रख के पनीरी मा 1 ले 2 सेंटीमीटर के गहिला मा लगाए जाते। मिर्चा के बुवाई ला हमन पनीरी लगा के कर सकथन। बीजा के मात्रा के बात करें तो एकर बर हाइब्रिड किस्म है तो 80 ले 100 ग्राम के बीजा और दूसर किस्म है तो 200 ग्राम के बीजा प्रति एकड़ के दर ले उपयोग मा लाना चाहिए। फसल मा माटी ले आनी बानी के जौन बीमारी है तेकर बर घलाव बचाव करे बर लगते, तो बीजा ला हमन उपचारित करके लगाथन तो बने रहते। एकर बर थीरम है चाहे कार्बेंडा जिम है, एला 2 ग्राम लेके प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करके लगाए ले बने होते।

0: संगवारी हो खातू माटी के घलाव चेत रखे बर पड़थे, जेमा नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, फास्फोरस 12 किलोग्राम, पोटास 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले सरहा गलहा गोबर के खातू के संग मा देना चाहिए। अब बात आ जाते बंद कचरा के, तो देखो संगवारी हो बंद कचरा हर हमर मुख्य फसल ला रोक देते, जेकर ले उपज हर कम होए लगते। तो खरपतवार के नियंत्रण करे बर पेंडा मेथिलीन 1 लीटर ला प्रति एकड़ के दर ले, चाहे फ्लू क्लोरोलीन 800 मिलीलीटर ला प्रति एकड़ के दर ले निंदा नाशक के रूप में देना चाहिए। हाथ ले निंदाई गुड़ाई के काम बूता ला घलाओ करत हन तो सुघर रही थे। सिंचाई के बात करें तो अभी के बेरा मा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे। संझौती बेरा 4 बजे के बाद कोहो पौधा हर मुरझाए कस दिखत है तो एमा पानी के आवश्यकता हर होते। ए बेरा मा हमन सिंचाई करत हन तो पौधा हर सुघर रही। संगवारी हो ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके मिर्चा के फसल ला लगाथन तो बढ़िया रही, उपज और आमदनी मा बढ़वार होही। एकरे संग जय जोहार, राम राम।
1: मिर्चा के उन्नत खेती, इस विषय पर ये थी जानकारी खेती की बात में। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं तुलसीकृत रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की, उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: तुलसीकृत रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। विषय है आदमी और भौतिक संसाधन। आलेख श्री सुरेश तिवारी का है।
1: यूनान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, डायोजनीस। वो भरी दोपहरी में लालटेन लेकर घूमता था। जलती लालटेन लेकर वो होता था एथेंस की सड़कों पर। लोग उससे पूछते, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम क्या खोज रहे हो लालटेन लेकर? वो लोगों के चेहरे में लालटेन से देखता। वो कहता, मैं आदमी खोज रहा हूं। जिंदगी के अंत में जब डायोजनीस मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा, तुम जिंदगी भर दिन की दोपहरी में लालटेन जलाकर आदमी खोजते रहे, मिला? डायोजनीस ने आंखें खोली और कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन यही क्या कम है कि किसी ने मेरी लालटेन नहीं चुराई। धन्यवाद इसी का कि लालटेन बच गई, नहीं तो कई की नजर लालटेन पर लगी थी। आदमी तो मिलता नहीं था, और आदमी मिलना कठिन है क्योंकि हर आदमी गौण हो गया है। डायोजनीस अपनी तलाश में आदमी ढूंढ रहा था, और आज का आदमी अपनी तलाश में क्या ढूंढ रहा है? आदमी अभी क्या है और कहाँ है? आदमी के बीच आज अपनेपन और प्रेम का अभाव हो गया है। आदमी आज विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा काम करने में जुटा है। आदमी आज ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में जुटा है। विकास के साथ उसकी दौड़ भौतिक साधनों को अपनी सीमा से कहीं ज्यादा पा लेने के लिए है। अधिक से अधिक पा लेने की दौड़ में आदमी वास्तव में कुछ पा रहा है या नहीं, पर यह दौड़ हर एक आदमी को थका दे रही है। हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहे हैं। हम कहां पहुंच रहे हैं या हम कहां पहुंचेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इस प्रवृत्ति के कारण आपसी प्रेम और भाईचारे पर बहुत असर पड़ा है। विकास की दौड़ में भाईचारा खत्म हो रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है। आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रवृत्ति ने कटुता फैलाई है। कटुता अपने पीछे बेचैनी लाती है। भाग दौड़ की इस दुनिया में हमें वास्तव में जो कुछ ढूंढना चाहिए वो है सुकून। सुकून हमने एक बार पा लिया तो बाकी सब चीजें हम पा सकते हैं। हमें अपने सामर्थ्य को भी पहचानना चाहिए। बर्फ के दो टुकड़ों को मिलाने की कोशिश करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होकर बिल्कुल मिल जाते हैं। सीमा खो गई, मिलन

0: सुलभ हो गया। इसी तरह दर्द और संवेदना की भी अपनी सीमा होती है। किसी के दर्द में शामिल होना और उसे दूर करने में भी अजब सा सुकून मिलता है। ऐसे सुकून की व्याख्या बहुत आसान नहीं होती। एक मार्मिक प्रसंग आपके सामने रखते हैं। जाड़े के दिन थे। महात्मा गांधी सेवाग्राम स्थित अपने आश्रम की गौशाला में पहुंचे। गायों की पीठ पर हाथ फेरा, बछड़ों को प्यार से सहलाया और तभी उनकी नजर वहीं खड़े एक गरीब लड़के पर पड़ी। बापू उसके पास आए और उससे पूछा, तू रात में यहीं सोता है? लड़के ने सिर हिलाया, हाँ बापू। बा की सहायता से साड़ियों का खोल सी डाला और अखबार के मोटे कागज और रुई भरकर कुछ एक घंटों में ही गुदड़ी तैयार कर दी गई। गौशाला के पास उस गरीब बालक को बुलाया गांधी जी ने और वो गुदड़ी उसे दे दी। दूसरे दिन सुबह गांधी जी फिर गौशाला में गए। लड़का दौड़ता हुआ आया, बापू रात मुझे बहुत मीठी नींद आई। बापू मुस्कुराए और कहा, सच? तब तो मैं भी इसी तरह की गुदड़ी बनवाकर ओढ़ूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करने के बाद जो खुशी हमें प्राप्त होती है उसे शब्दों के माध्यम से बयान कर पाना कठिन है। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ जाना होगा। गरीब असहाय बेबस लोगों की सहायता करके ही हम वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें मानसिक शांति मिल सकती है।
1: आदमी और भौतिक संसाधन, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आलेख श्री सुरेश तिवारी का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: सुबह 7 बजे दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण। सुबह 8:30 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण।
0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता

0: दिवस की हार्दिक बधाई।
1: आज शाम 5:05 पर सुनिएगा पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। रिकॉर्डिंग सहयोग पवन थवाइत और मैका लेक्का का होगा और संयोजन होगा डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोह की समन्वित रेडियो रिपोर्ट का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा। समय होगा 8:15। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित करेंगे इस सप्ताह संसद में। और अब समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार और ठीक 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पढ़े राष्ट्र को संबोधन का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीय वायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणम् एकविंशति भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्यावश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

नाएं। 15 अगस्त 2026 की सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

0: प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है, जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय

0: के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच के सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, आपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा। आपने मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैक के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं।

0: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर।

0: हाँ उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सलवन के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थलसेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का भामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई। कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और

0: साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे। इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं।

0: उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य

स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम

विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी

के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है, वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की
हमने घोषणा की है।

कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य स्तर जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था।

12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल

और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर के अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी

कुछ लोगों को आनंद आ रहा था, लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचाने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना हो, हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल

सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसे मैं चाहूंगा कि हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।

इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे, रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी

आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने

बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा, हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है।

हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब

प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान

शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं

वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं।

अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से, इस बार 17

0: अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। ज्ञानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन।

अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। भारत

0: भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामय मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92%

0: तो गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से शत प्रतिशत आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाई ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
2: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं।

0: है, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
1: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
0: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
1: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल

0: लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गतिशक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो

0: भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.com

0: GOV.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi.

0: Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara, aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा भूस्खलन का प्रकोप रहा अनेक परिवार प्रभावित हुए उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है मेरे देशवासियों अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं हमें बड़े सपने क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो पीड़ित हो वंचित हो आदिवासी हो गांव में रहने वाला हो शहर में रहने वाला हो युवा हो बुजुर्ग हो नारी हो पुरुष हो हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी डिजिटल

0: ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े.
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी. एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए. और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो. भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका.
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए. दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है.
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI impact summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य. मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of

0: प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
1: सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पवित्र दिन हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं, जिनके बलिदान के बूते हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे हमारे महानायकों ने हमें जो आज़ादी की मशाल सौंपी है, इसे लेकर हमें निरंतर आगे बढ़ना है। आज छत्तीसगढ़ महतारी के सपूतों को याद करने का भी दिन है। हम शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हैं, जिन्होंने जनता को भूख से मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य से संघर्ष किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि धरती में इनका सूरज कभी नहीं डूबता। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, ध्रुवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धूर, आयतू महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। हमें इस बात का भी गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से समाप्त करने का संकल्प पूरा किया। हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिनके मनोबल और साहस के दम पर हम यह लक्ष्य हासिल कर पाए। हम प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन करते हैं, जिनकी भागीदारी से हमें यह लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिली। अब बस्तर को पुनः संवारने की बारी है और इसे देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बनाना है। हमने इसके लिए रोड मैप तैयार किया है और इसके अनुरूप काम कर रहे हैं। नियत नेलानार योजना के माध्यम से हम गंभीर नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में अधोसंरचना के कार्य प्रभावी रूप से कर रहे हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। बस्तर मुन्ने अभियान के तहत हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं जानकर उन्हें हल किया है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत हमने बस्तर के लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए बड़ा अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच हमने की है। अभी बस्तर के 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। हमने इसे आने वाले 3 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जिन जगहों पर सुरक्षा कैंप थे, वहां अब हम सेवा डेरा आरंभ कर रहे हैं। बस्तर में हम अंदरूनी सड़कों को जोड़ने और इनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के माध्यम से सार्वजनिक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। हम जगदलपुर से हवाई सेवाओं का विस्तार करने पर भी कार्य कर रहे हैं। रावघाट जगदलपुर रेल मार्ग के विस्तार से बस्तर में औद्योगिक संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। बस्तर के बंद पड़े स्कूलों में घंटियां पुनः बजनी आरंभ हो गई हैं। जगरगुंडा तथा ओरछा में हम एजुकेशन सिटी आरंभ करने जा रहे हैं। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरंभ हो गया है और इस सत्र से गीदम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आरंभ हो रही है। धरती के स्वर्ग बस्तर में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आ रहे हैं। होम स्टे के प्रावधान होने से लोग बस्तर की जनजातीय संस्कृति भी निकट से महसूस कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से बस्तर की सुंदर जनजातीय संस्कृति की खुशबू देश दुनिया तक पहुंच रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रदेशवासियों को दी गई गारंटियों को भी हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है। पहली ही कैबिनेट में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। अब तक हम 24,50,000 आवास स्वीकृत कर चुके हैं। हम हर दिन 1600 घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से

हम 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। माताओं बहनों से जुड़े सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। हम महतारी बंधन योजना के माध्यम से हर महीने 70 लाख से अधिक माता बहनों के खाते में 1,000 रुपये की सम्मान राशि भेज रहे हैं। अब तक हम 19,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि भेज चुके हैं। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में 13,85,000 लखपति दीदी हम बना चुके हैं। हमारे अन्नदाताओं से जुड़े हुए सरोकार हम पूरे कर रहे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर हम प्रदेश के किसानों को देश में सबसे अच्छा दाम दे रहे हैं। हम अंतर की राशि भी किस्तों में न देकर एक मुश्त दे रहे हैं। इस बार हमने होली से पहले यह राशि किसान भाइयों के खाते में भेज दी। हमारे राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल जी की सोच के अनुरूप हम नदियों को जोड़ने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमने पुनः आरंभ किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पीएम जनमन योजना से 56,000 से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं और 6,691 जनजातीय बहुल गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ पहुंच रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को सुविधा देने के परिणाम सामने आने लगे हैं। नीट परीक्षा में इस बार एकलव्य तथा प्रयास विद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी चयनित हुए हैं। हमारी युवा शक्ति हमारे देश और हमारे प्रदेश के लिए सबसे बड़ी संभावना है। हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना युवा शक्ति की ऊर्जा से पूरा करेंगे। प्रदेश में नियमित और पारदर्शी परीक्षाएं हो, इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाया है। मंडल हर साल परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार करेगा और 7 कैटेगरी में नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी। हमने नकल को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाया है। हमारी नई औद्योगिक नीति से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उभर रहे हैं। इस नीति के आने के बाद अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इन पर तेजी से काम हो रहा है। नए जमाने के उद्योगों के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास के लिए हमने 30 ITI का उन्नयन किया है। वर्षा काल के बाद हम जिला और प्रदेश स्तर में रोजगार मेलों का आयोजन भी करेंगे। अच्छे करियर की शुरुआत अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं से होती है। हम राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं जैसे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, कैंपस, निफ्ट, नाइलिट यहां लेकर आए हैं। इस सत्र से हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज भी आरंभ किए हैं। मुख्यमंत्री AI मिशन के माध्यम से हम प्रदेश में AI की संभावनाओं का भी पूरा लाभ उठाने युवाओं को तैयार कर रहे हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वर यादव को हमने DSP के पद पर पदोन्नत करने तथा 30 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। हमने राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए शासकीय सेवा के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। आयुष्मान योजना के माध्यम से हम प्रदेश के 91% लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। उद्योगों की सुगमता के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित किया है। हमने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे आवश्यक अनुमतियां पोर्टल के माध्यम से तय समय में मिल रही हैं। जनविश्वास अधिनियम के लागू होने से कारोबार अब आसान हो गया है। हम AI SEZ बना रहे हैं और AI डेटा सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। हमने एनर्जी समिट के माध्यम से प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से प्रदेश के 12 लाख उपभोक्ताओं का 900 करोड़ से अधिक का बकाया सरचार्ज माफ किया। प्रदेश के 90,000 से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा उत्पादक बन चुके हैं। केंद्र सरकार

0: सरकार के साथ हमारी सरकार भी सब्सिडी दे रही है। हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाई सुशासन की राह पर चलती है। हमने लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 आरंभ की है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासन की 700 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी कामकाज की गति तेज करने हमने ई ऑफिस प्रणाली को अपनाया है। मजबूत कानून व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त है। प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। साइबर अपराधों की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए राज्य में 9 नए साइबर पुलिस थाने बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ देश के सबसे सुंदर राज्यों में से है। पर्यटन को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा प्रदेश भगवान श्री राम का ननिहाल है। ननिहाल के लोगों को रामलला का दर्शन कराने के लिए हम रामलला अयोध्याधाम दर्शन योजना चला रहे हैं। अब तक 49,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यह बाबा गुरु घासीदास जी की धरती है। उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। हम उनकी प्रेरणा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आइए माँ भारती की वंदना के इस त्यौहार स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: अभी आप सुन रही थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। दिन के 10:05 होने को हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम अमराई का। आज की इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे कुछ छत्तीसगढ़ी देशभक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे चतुर राम साहू, GD मानिकपुरी और साथी।

0: कार्यक्रम के पहले गीत के रूप में आइए सुनते हैं चतुर राम साहू और साथियों के स्वर को। उससे पहले बारी है कुछ संदेशों की।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फैंसी ज्वेलरी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, रंग बिरंगी राखियां, अंडर गार्मेंट्स और लेडीज पर्स के लिए आज ही संपर्क करें सहेली सुहाग भंडार बिलासपुर से। फोन नंबर है 9827187330।
5: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा।

0: नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फैंसी ज्वेलरी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, रंग बिरंगी राखियां, अंडरगार्मेंट्स और लेडीज पर्स के लिए आज ही संपर्क करें सहेली सुहाग भंडार बिलासपुर से। फोन नंबर है 9827187330।
0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।

0: स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।

प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।

0: मोर सखी भैया के अमर है सुहा,
1: महर महर।

0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फैंसी ज्वेलरी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, रंग बिरंगी राखियां, अंडरगार्मेंट्स और लेडीज पर्स के लिए आज ही संपर्क करें सहेली सुहाग भंडार बिलासपुर से। फोन नंबर है 9827187330।
0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
2: और इसी के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए चतुर राम साहू, जी डी मणिपुरी और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और किस परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसेमंद संस्थान नेट फेलोशिप अकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपर्क करें 8035249222।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और किस परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसेमंद संस्थान नेट फेलोशिप एकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपर्क करें 8035249222।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम में अगला संदेश से पहले श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
1: जय हिंद। प्रतिदिन की भांति यातायात संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर आप सुनेंगे उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहा है। इसी क्रम में हमेशा की तरह बिलासपुर पुलिस स्टेडियम में पूरी भव्यता के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी के आतिथ्य में भव्य एवं व्यापक रूप से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण के पश्चात संदेश वाचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे एकत्र होंगे। पुलिस स्टेडियम के चारों तरफ की सड़कों में इस समय यातायात का दबाव बहुत अधिक होगा। सुगम और सुरक्षित यातायात की दृष्टि से चारों तरफ ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए बर्जेस स्कूल का मैदान निश्चित किया गया है। आप सभी से अनुरोध है अपने वाहन सड़क के किनारे यत्र तत्र खड़ा न कर पार्किंग स्थल में ही रखें। साथ ही सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस कर्मचारियों से बिना विवाद किए उनके संकेतों का शत प्रतिशत पालन करें। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर तिरंगे के साथ छोटी बड़ी अनेकों रैलियां शहर में निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज प्रातः 10:30 बजे सेना एवं पुलिस के पूर्व कर्मचारियों के संगठन सिपाही के द्वारा शहर में विशाल बाइक रैली निकाली जा रही है। यह रैली पुलिस परेड मैदान से चलकर सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, मैग्नेटोमाल, व्यापार विहार, महाराणा प्रताप चौक, गौरव पथ, मंगला चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक, राम सेतु, देवकी नंदन चौक, गोल बाजार, गांधी चौक, जगमल चौक, रेलवे कॉलोनी, तार बहार चौक होते हुए सीएमडी चौक अर्थात अमर जवान चौक में संपन्न होगी। वहीं एक अन्य बाइक रैली दोपहर 2 बजे नूतन चौक सरकंडा से चलकर सीपत चौक, राम सेतु, नया रिवर व्यू से वापस इसी मार्ग से आकर नूतन चौक में संपन्न होगी। सभी बाइक रैली के सभी सदस्यों से अनुरोध है दो पहिया में तीन सवारी न चलें, पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को बनाए रखते हुए एवं स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हेलमेट पहनकर ही चलें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, यह था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर का प्रसारण। और अब कार्यक्रम नए तराने के समापन में फिल्म मणिकर्णिका से लिया गया ये गीत आइए सुनते हैं।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

फिल्म मणिकर्णिका के इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यहीं विराम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं सुगम संगीत का। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत।

समोसरों में ये देश वंदना आपने सुनी। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले आइए श्रोताओं सुनते हैं कुछ संदेश।

0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: नमस्कार, मैं लायन मनीष कुमार चंदेल, सचिव लायन।

0: क्लब बिलासपुर। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी शहरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लायनवाद।
1: स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की

0: भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: मैं लैन हरदीप सिंह सलूजा, अध्यक्ष लायंस क्लब बिलासपुर, सभी शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
1: नमस्कार, मैं लायन मनीष कुमार चंदेल, सचिव लायंस क्लब बिलासपुर। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी शहरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लायनवाद।
0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
2: नमस्कार, मैं लायन हरदीप सिंह सलूजा, अध्यक्ष लायंस क्लब बिलासपुर। सभी शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

15 अगस्त का ये दिन याद दिलाता है वीरों की कुर्बानी को, शहीदों के बलिदान को, कि कितने संघर्ष के बाद हमने पाई है ये आज़ादी। प्रण करें यही कि अपने मस्तक को कभी झुकने न देंगे, तिरंगे की आन के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे।

0: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ स्टाइलिश चश्मे की फ्रेम और नंबरों की सही गुणवत्ता के साथ अगर आप भी दिखना चाहते हैं सुपर कूल, तो आज ही संपर्क करें गुरु नानक चश्मा घर, सिम्स चौक और राजीव प्लाजा बिलासपुर से। फोन नंबर 9826662824।
1: स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ स्टाइलिश चश्मे की फ्रेम और नंबरों की सही गुणवत्ता के साथ अगर आप भी दिखना चाहते हैं सुपर कूल, तो आज ही संपर्क करें गुरु नानक चश्मा घर, सिम्स चौक और राजीव प्लाजा बिलासपुर से। फोन नंबर 9826662824।
1: स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और किस परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसे मन संस्थान नेट फेलोशिप एकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपर्क करें 8035249222।
3: कितने बार ही टूटे हम, कितने बार ही बिखरे, लेकिन कड़ियां जुड़ जाती हैं, नवनीड का निर्माण होता है बारंबार, और कोशिश यही हो हर बार।

स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

आज 15 अगस्त है। जी हाँ श्रोताओं, क्लर्क फिल्म का यह गीत आपने सुना, उत्तम जगदीश महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। मनोज कुमार की रचना थी और उत्तम जगदीश का संगीत। चित्रपट संगीत में आई श्रोताओं, आप सुनते हैं एक और गीत।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ए हरिहरण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। नदीम श्रवण का संगीत है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म परदेश से।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। 11:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब वो अपने सपने, अपने संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। देश अब छोटे सपनों से नहीं बल्कि बड़े सपनों से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति

0: सोच और काम की गति को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी अपनी चाल चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे नक्सलियों को पहचानना होगा। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराएं, इसके लिए खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने लोक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसदों और विधायकों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवा प्रतिभा संपन्न, निष्ठावान और कौशल संपन्न हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।
2: स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने

0: वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज थी, शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, मुकेश की आवाज में फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो।

जिगरी दोस्त इस फिल्म में मोहम्मद रफी को आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी, श्रद्धा और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गंगा की सौगंध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहा।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं, उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बानी से।

सजे तिरंगे की शान चौकट को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं माँ भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आज़ादी के रंग का गुलाल है साथियों, जो आज सबके मुख पर है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है, आपके आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशीन तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है। ओढ़ कर धानी चुनर सजा कर आजादी की मेहंदी, जैसे दुल्हन चली गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है, क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में, जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ मान रखते हैं उन सभी शहीदों का और हर कर्म में जिन्हें हमें जिंदा रखना है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज हमारे हवाओं में जो स्वतंत्रता है वो हमारे वीरों के बलिदान की सुगंध है। जब चारों ओर दिशाओं से वंदे मातरम की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति उन वीर सपूतों की आरती उतार रही है। वंदे मातरम की तान लिए चारों दिशाएं डोल रही हैं, वीर सपूतों के शौर्य की गाथाएं खुद बोल रही हैं। मातृभूमि की रक्षा जिन्होंने शीश अपने कटाए, आज झुककर शीश वतन उनके वंदन को आए हैं।

हंसराज बहल की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। आपने सुनी सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओ, इस गीत में आपने देखा होगा कि दो कलाकार नजर आते हैं रथ पर। ये कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। स्वतंत्रता दिवस की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, देश को भी, हमें भी, और हम भी यहां से तमाम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की यादों की अगर बात करें श्रोताओं, तो जिनसे दिल कभी खाली नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, आज मौका है, कह दीजिए अपने दिल की बात। तिरंगे की यादों, स्वतंत्रता दिवस की यादों में आपके दिलों में क्या क्या खजाना आज छुपा है ये आप बता दीजिए, और बचपन की बातें भी, स्कूल की बातें भी जरूर बताइएगा, और साथ ही आजादी के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या हैं ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, 15 अगस्त वो दिन है जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों के बलिदान से तिरंगा आजादी की सांस ले पाया था। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, वो किसी की आंखों का सपना और किसी माँ के बेटे की कुर्बानी। आजादी सिर्फ छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है, देश को ईमानदारी, एकता और मेहनत से आगे बढ़ाने की।

बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, आनंद मठ फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब में लिखा है कि प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं रथ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। और इस गीत को किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जो अभी हमने आपको आनंद मठ फिल्म का सुनवाया। और आनंद मठ जो है श्रोताओं, ये एक रचना है, इस बारे में अगर आप हमें बताएं तो क्या ही बात है कि किसने लिखी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता, एकता और गौरव के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों के बलिदानों से मिली आजादी हम सब के लिए अनमोल वरदान है। एक और श्रोता ने लिखा है, सुमधुर सुरीले गीतों और जो आज संदेश हैं वो पढ़े जाएंगे। और एक और श्रोता ने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि दुल्हन चली, पहन चली, और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो ये सारे गीत ये लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता ने लिखा है कि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया।

के बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है देश के हित के लिए कार्य और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही हम शांति पूर्वक जी सकेंगे। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रेगिस्तान की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात चौकस दृष्टि लिए हुए हमारे वीर जवान चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। उन्हीं के कारण हम सभी भारतवासी सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। आजादी के लिए हमारे कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपको श्रोताओं जो बचपन की यादें हैं वो हमसे आज साझा करनी हैं, और साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस किस खास अंदाज में आपने मनाया ये भी आप हमसे जरूर बताएं। ये किस फिल्म का गीत है और संगीतकार कौन है?

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगी ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं, लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में

जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस, जज्बा, हौसला, मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में हैं, बसंती, दुल्हन, विजय, विश्व, तिरंगा, ब्रह्मा, वतन, पैगाम, तूफान, जानो तन और तमाम शब्द के बारे में, शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएगी। सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

प्रदीप की यह रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार की तर्ज से जागृति फिल्म का यह गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी। ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुवी रसपूर्ण गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए, तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गांव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओ कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे, तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूं, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा, नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली, पहन चली, तीन रंग की चोली और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। वो कौन से कलाकार हैं श्रोताओं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है।

0: भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें जरूर बताएं। और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से लिखा है कि नमन करूं वंदन कर लूं मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती हैं कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्यौहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं। और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओं।
1: करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बा

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोताओं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला, और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया। उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनु जलेबी जो है वो जगह जगह यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती हैं ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2.5 महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था, सुबह सुबह इस्त्री की हुई स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से स्कूल पहुंचते, प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था, देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयां हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं और क्या यादें हैं आज खास, क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओं, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें, और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। फिल्म का एक दृश्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। जागृति फिल्म के बारे में हमारे कुछ एक श्रोताओं ने जो है वो कमेंट किया है कि बहुत अच्छी फिल्म थी।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वह सब याद आ रहा है।

0: साथियों।
1: एक श्रोता ने प्यारा सा कमेंट लिखा है कि मैं एनसीसी में थी और बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा है। मेरा सपना था मेरे घर के बच्चे फौज में जाएं और मैं अपने पापा के साथ झंडा फहराने जाया करती थी।

शुभता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

मोहम्मद रफी के गाए फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं स्वाधीनता दिवस पर। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें, अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज़ादी केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का संकल्प भी है। आइए हम अपने आसपास स्वच्छता, सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें, अपने कर्मों से देश को मजबूत बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील भारत का निर्माण करें। देश के प्रति सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में आज़ादी का उत्सव है।

0: बढ़ाना साथ देने।
1: दोस्तों आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और ये सोचने का दिन भी है कि एक नागरिक के रूप में हम अपने देश को क्या दे रहे हैं। आज़ादी हमें बहुत संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है, इसे सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम, ईमानदारी से निभाया गया एक कर्तव्य और किसी जरूरतमंद के लिए बढ़ाया गया एक हाथ भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल देश को सिर्फ शुभकामनाएं ही न दें, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने का संकल्प भी लें। हम अपने देश की विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अपने आसपास प्रेम और सद्भाव बनाए रखें।

दोस्तों, हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को आज की तारीख की अहमियत समझाएं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, उन क्रांतिवीरों के बारे में बताएं जिनकी बदौलत हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हें ये भी बताएं कि आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की कीमत पर हासिल हुई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी केवल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम भर न करे, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान को भी समझे। आइए हम अपने बच्चों को आजादी का इतिहास ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी सौंपें, ताकि वे इस देश की स्वतंत्रता, एकता और गरिमा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचा सके। यही हमारा स्वतंत्रता दिवस का सच्चा संकल्प होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।

0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति

0: गहरी श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच

0: इस वर्ष 26 जून को बनी सहमत के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक एक विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: पगड़ी

0: एन दत्ता की तर्ज राजा मेहदी अली खां के बोल आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी

0: तेरा मिट गया मालूए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालोए पगड़ी।
1: गीत और संगीत था प्रेम धवन का, मोहम्मद रफी की आवाज में शहीद फिल्म का गीत आपने सुना।

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिर जहानवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: गाया, उनका गीत आपने सुना महेंद्र कपूर आशा भोसले का गाया, सच बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: आप हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।

लीजिए, आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं, रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये तो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और आल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इस गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन रूपाली प्रीति निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से और इस गीत को सुनना चाहते हैं। पुरानी सुनना चाहते थे पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चलाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी, संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डव्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पा रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और लै।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?

0: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
1: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब, मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
0: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
1: ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
0: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
1: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
0: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
1: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
0: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर? कौन है बाहर? ए, कौन है बाहर? अरे कौन है बरामदे गए? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
2: अरे हाँ, मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
0: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
2: चलो चलो, हजूर हमारे घर के ही बच्चे हैं।
0: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
2: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए।
0: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
1: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
0: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
1: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
0: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
2: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
0: बताओ भला, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम, ये क्या बजाने लगे तुम?
1: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
0: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
1: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
0: हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
1: डॉक्टर मूले।
0: ओह यस।

0: हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
0: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
1: अरे ये क्या हुआ?
0: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
1: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो?
0: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
1: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
0: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
1: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई, इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
0: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
1: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम, शाम, शाम,
1: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम,
1: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर? क्या क्या हुआ, क्या बहादुर? अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
2: वो
1: क्या वहाँ वहाँ कहाँ?
2: बहादुर,
1: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी? बहादुर,
2: अरे कोयला खान, कोयला खान में शाह,
1: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: शाह, कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
1: पानी आ गया?
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
1: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
1: अरे मरेंगे तो अब हम।
2: क्या बोले साहब?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आओ साहब,
1: चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूं।
2: जल्दी आना साहब, जल्दी आना साहब।
1: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
0: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
0: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
1: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूं। लेकिन, लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। अच्छा? हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
1: अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब होंगे करीब 35।
1: 35?
3: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
1: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: जी साहब, वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
1: देखिए देखिए देखिए, मैं
4: आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
1: देखिए, वो मेरी भी कुछ मजबूरी
4: है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या
1: है। अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
4: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते ही
1: नहीं। देखिए देखिए, मेरी एक बात सुनिए।
4: देखिए क्या देखे, देख तो रहे, 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
1: मैं पूरी कोशिश करता हूँ
4: मनोहर। हम तो खुद कर लेंगे
1: मनोहर। जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में
5: है कि नहीं
3: साहब? लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की जोन काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
5: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
3: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है।

0: लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा।
1: अब
0: तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
2: क्या करूं? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
0: होंगे यही करीब करीब 400-450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
3: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
3: जी, चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर ले।
2: मैं बात कर लूं?
3: जी।
2: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
3: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
2: अच्छा मनोहर, तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ। मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
4: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
2: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
5: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
6: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
7: कब हुआ ये सर?
6: सर करीब आधा घंटा पहले।
2: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
7: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर वर गए?
2: मर गए सर? मतलब
7: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
2: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
7: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
2: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो।
7: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो। अब बस कोई मरे नहीं, यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
2: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, नो, फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
6: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
2: आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
3: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
2: What?
3: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
2: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
3: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने।
2: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
3: सर सर मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
2: पुलिस?
3: जी।
2: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
3: चलिए।
8: अरे भेजे,
9: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
2: देखिए देखिए आप लोग शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। औने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
3: वो देखिए साहब, मनोहर वगैरह आ गए।
2: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
10: अरे साहब वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, वो शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है साहब।
2: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
10: ताला तोड़ दे?
2: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
10: अरे मगर साहब गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
2: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब, आप भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
10: साहब चले चलिए।
2: अच्छा ठीक है, और चलो चलता हूँ मैं।
11: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
2: सुनो
11: जी,
1: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?

0: साहब है।
1: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते, मैंने खुद पकड़ा।
0: हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
1: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोर बहुत भली है साहब।
0: क्या, सात बच्चे?
1: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिले ना साहब, भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
0: अच्छा
1: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कम वक्त ये पाजी चपरासी, इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट पे। तो
0: हाँ।
2: लीजिए साहब, टूट गया।
0: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
2: हाँ सर।
3: अरे यहां तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहां तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
1: हाँ कुछ।
3: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
1: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
3: हाँ ढूंढो। मिल गई टॉर्च मिल गई।
1: अच्छा साहब टॉर्च मिल गई।
0: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
4: जी अच्छा।
0: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
4: जी
0: भाई देखो, अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
4: जी अच्छा जी अच्छा।
3: अरे ओ बाबू हर्षोक आ जाओ,
0: अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
3: अब बैठो भैया,
4: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं बाबू, बाबू तुम पाइप ले चलो। लगाओ तो
2: ये तो घूमता ही नहीं है।
0: शंकर अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश।
2: अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं, अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने मारने पुतारू हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाई बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए, तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
0: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मनोहर और तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
2: जी अच्छा।
0: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
2: जी समझे
0: मनोहर, जल्दी करो पाइप नीचे लटकाओ।
3: हाँ।
0: और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
1: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
0: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
2: ये लीजिए सर, पाइप छोटा ना पड़ जाए।
0: सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
4: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
2: 400 फुट?
4: पाइप 600 फुट लंबा है।
2: अच्छा, अच्छा।
4: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
5: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी।
0: अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: शाबाश बनो, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
1: जी साहब जी साहब। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
2: वेरी गुड वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
0: अरे अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे कौन? अरे अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: अरे पागल हो गए क्या?
0: जाने कौन भड़का रहा है इन्हें।
1: मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
0: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
1: अरे नहीं साहब, अरे नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को।
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये है शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया।
4: मगर ध्यान है
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए।
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: यहाँ पर
3: सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, रामदेव में तरह तरह के गुलाब लगा रखे मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really, I'm very sorry।
5: ठंड है तो कहीं आ जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं। ओह गॉड, नर्स भैया इंजेक्शन।
3: डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: Guns, lights, sound, camera, action.
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है।
2: झलक दिखला जा, एक बार जा, जा, जा, जा।
1: उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
3: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, बस मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
5: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
4: जी, विविध भारती देश की सुरीली
5: धड़कन। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
5: बिल्कुल।
4: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाए, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है। इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है।
5: बोमन ईरानी
4: को,
5: डैनी डांसोंगपा।
4: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
5: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
4: बहुत प्यारी फिल्म,
5: बहुत प्यारी फिल्म,
4: बहुत प्यारी फिल्म है।
5: नेशनल अवार्ड मिला है उनको ऐसे डायरेक्टर उस फिल्म पे। एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
4: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत
5: है, खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
4: वो सूरज जी उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थ

0: डे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहा है जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग।
1: हाँ हाँ
0: केटिको का मतलब होता है लड़की,
1: अच्छा
0: हाँ नेपाली भाषा
1: नेपाली
0: में
1: शब्द है
0: लड़की।
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर वो गाना की और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
1: जी
0: कर।
1: वही
0: अच्छा अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो
1: हाँ
0: इतने ग्रेसफुल डांसर साबित
1: हाँ
0: कर चुके अपने आप को,
1: हाँ
0: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
1: जी
0: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
1: अच्छा
0: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
1: हाँ
0: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
1: हाँ
0: एक
1: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
0: इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन
1: हाँ
0: दिग्गज कलाकारों को।
1: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है,
1: हाँ
0: अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ,
1: हाँ
0: अनुपम खेर जी,
1: जी केटी
0: केटी को।
1: को, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया।
0: बिल्कुल
1: हमें भी उस
0: बताऊंगी,
1: मजे को, उस
0: बिल्कुल
1: मजे
0: बताऊंगी,
1: वाली जिंदगी को जीना है।
0: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले
1: जी
0: जाऊंगी।
1: जी चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की,
0: बिल्कुल
1: इस उम्र में
0: पहाड़ी
1: भी
0: लड़की
1: बहुत
0: जी।
1: बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो।
0: हाँ एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे।
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी?

0: अच्छा जी सर, मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ।
1: क्या
0: जब मैं
1: बात है,
0: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
1: पूरा लड़का बन
0: पूरा
1: जाती
0: लड़का
1: हो।
0: बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा, मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई। सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं। फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे, सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने। कुछ गया, तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
1: जी
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये
0: कि
1: बड़प्पन है।
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने। हाँ सर, हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सर हाँ, मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था। उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे, सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया।
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है।

0: 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया,
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गया, और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं, वो
0: दिन
1: परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की।
0: और वो
1: जी
0: मुझे मास्टर जी कहते थे, तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
1: हाँ
0: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
1: हाँ
0: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा,
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी, और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है।
0: कि
1: जी
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन, और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ, उनका तो जानना है
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो
1: बिल्कुल।
0: इतने कमाल के एक्टर है,
1: जी
0: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में।
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है, और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं
0: वहीं
1: रहते
0: रहते थे, मतलब कि 500
1: मजा
0: लोग वहीं खड़े हैं,
1: आता
0: 100 150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो
1: हाँ
0: ताली भी बजा रहे,
1: हाँ
0: और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60 70 के
1: हाँ
0: डांसर्स भी थे, और
1: हाँ
0: वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो
1: जी
0: एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी
0: और उसके बाद डेनी सर,
1: हाँ, उनका भी जानना है। वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने
1: हाँ
0: करना है मेरे साथ,
1: हाँ
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
1: करते थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे उनका एक पोशन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा, और फिर उनको किटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते हैं, और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी हम
0: बहुत
1: कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट,
1: जी।
0: और वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं, कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना
1: होगा ना
0: बहुत मजा,
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा
1: होता।
0: नहीं होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था। हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों
1: कर
0: नहीं
1: ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते हैं।
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है। साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटर और गुरु मानती हूँ,
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो।
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ।

0: जी
1: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
0: जी
1: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
2: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
2: अच्छा।
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
0: जी
1: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया, और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी
1: एक स्केड्यूल करने का,
0: जी
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
0: ओके
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
0: हाँ,
1: स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे।
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे,
0: जी
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
2: हम पैसे के लिए गए थे।
1: चलो, वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
0: हाँ,
1: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
2: कोई दिक्कत
1: कोई
2: नहीं है,
1: दिक्कत
2: रिस्क
1: नहीं है,
0: नहीं
1: मम्मी ने
0: है।
1: कहा बेटा चलो करते
0: हाँ
1: हैं, देख लो
0: हाँ
1: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए, और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
2: बहुत
1: मेरी
2: प्यारी
1: पहली,
2: फिल्म है, बहुत
1: बहुत
2: प्यारे
1: प्यारी
0: गाने
1: फिल्म।
0: हैं। जी
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
2: ये
1: वो मेरे,
2: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
2: हाँ, भारत की बहुत
1: जो
2: सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
1: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या
2: जी
1: जो बता दो क्या करना है,
2: जी
1: वो भी बड़े यंग ही थे,
2: हाँ
1: बट वो
2: हाँ
1: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए
2: जी
1: उस वक्त, कुछ भी सब कुछ नया था,
2: हाँ
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
2: वही सीख
1: जिंदगी।
2: रहे थे, वही कर रहे
1: तो वो
2: थे।
1: जब देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है।
2: जी
1: संजय लीला भंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
2: हाँ,
1: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
2: बढ़िया
1: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
2: जी।
1: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
2: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
1: हाँ, और
2: बहुत
1: वो
2: ज्यादा गैप
1: समझते थे
2: नहीं
1: कि,
2: था।
1: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
2: जी
1: वो उनकी
2: बिल्कुल
1: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
2: जी
1: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद मैं सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
2: तो
1: मतलब
2: बताने तो जाना
1: खामोशी के
2: पड़ेगा।
1: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है
2: हाँ
1: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल,
2: हाँ
1: तो तू सिखा, सनी
2: हाँ
1: देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा
2: हाँ
1: जी बोल रहे तू सिखा, तो
2: हाँ
1: लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
2: रेपो बन
1: गया,
2: गया था
1: तो वो
2: इधर।
1: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
2: जी
1: पहली दबंग, मस्त मस्त दो
2: जी
1: नैन गाने किया
2: जी
1: था वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या कर रही हो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया।
2: बिल्कुल
1: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3, सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया, सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
2: जी
1: रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई, क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
2: जी बिल्कुल
1: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
2: जी
1: उसके पहले नाच आई।

0: मेरी काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था,
1: हाँ,
0: मुझे बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा।
1: उसमें।
0: राम गोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये चलता रहा चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया, आशिक बनाया। उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया है।
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ। जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था
1: हाँ
0: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट। वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस
0: क्रिएट
1: चीज
0: हो
1: का।
0: गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है।
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी, दब
1: हाँ
0: स्मैशेस
1: हाँ
0: बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग, हुड़ हुड़ दबंग जब आया,
1: हाँ
0: उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे,
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो तो
1: कमर
0: गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य जी
1: मेरे।
0: ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए। जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे
1: अच्छा
0: दिया ये गाना कि
1: अच्छा
0: शबीना करेगी, तुम करो ये गाना।
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ।
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा।
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है, ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो। तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि खूबत
0: कि ही नोज
1: है,
0: यस
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख के
1: जी
0: उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया,
1: जी जी
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका?
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलीन का और
1: हाँ
0: सलमान
1: हाँ
0: खान का,
1: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत है
0: वो
1: जी
0: गाना मुझे दिया बुला के। तो एक
1: जी
0: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते। और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आपके लिए आसानियां हो जाती है।
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान
1: हाँ,
0: खान की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे,
1: जी
0: नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है।
1: जी

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020 से 21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर
1: थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया,
0: हाँ।
1: उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ।
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़ जाती
0: है, तो एक विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनकी बेटी की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे या 27, 28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
0: हमारा पुराना वाला अच्छा था।
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर
1: है, उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप,
0: हाँ।
1: यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए,
0: हाँ।
1: अच्छा जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का गड्डी।

0: लेके
1: हाँ
0: वही स्टेप रखेंगे। उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे, उत्कर्ष शर्मा, जो
1: हाँ
0: अनिल शर्मा जी के बेटे,
1: जी
0: उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ
0: मैंने
1: बिल्कुल
0: कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए। एक
1: जी
0: गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत
0: जो
1: पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है। तो
1: हाँ
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना,
1: खूबसूरत सेट था वो।
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है, ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत।
1: बिल्कुल
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गंवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के।
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ
1: हाँ
0: नहीं सकते पीछे,
1: हाँ
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा।
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वाले लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वाले नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है, लेजेंडरी,
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: उन सबको
0: कोहिनूर है वो,
1: आपने काम करवा लिया। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70 60 से लेके 80 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा
0: बिल्कुल
1: है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात,
0: बिल्कुल
1: ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
0: मेरा पहला हीरो, मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो,
1: अच्छा
0: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं,
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव
1: जी
0: ही थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये यह आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो? क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, या वो जो मजाक मस्ती है, या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है, वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है, जो देख रही होती है, वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को, हंसाना
1: रुलाना आसान है।
0: बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटिको में अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा
0: उसके बाद मैंने उनके 2 3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं,
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में,
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12 13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी
0: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके, एक्टर शुड टच द सेट एट
1: मतलब
0: सेवन,
1: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
0: बिल्कुल।
1: होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉर्ट दिखाया।

0: डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है। हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन मैं नाम नहीं लूँ, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7,
1: 7 means 7.
0: सेवन पैकअप। शी स्टार्ट क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30 पौने 7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं,
1: अच्छा,
0: और
1: तो
0: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
1: हाँ,
0: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
1: निकल भी
0: हैं।
1: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है.
0: एब्सोल्युटली।
1: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं. तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल
1: हाँ,
0: तेरे इश्क में खो
1: हाय हाय,
0: जाते
1: क्या बढ़िया,
0: हैं।
1: बहुत खूबसूरत सा गीत है. तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
0: प्लीज
1: और हम
0: सुनिए।
1: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए. बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया. तो चलते हैं इस गीत की तरफ.

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था,
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले
0: जाएंगे।
1: जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी
1: कदम चली मैं थी,
0: जी
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन
0: ऐसा
1: के
0: होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है। हमारी हमारी
0: जी
1: टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है। हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी, हम
0: मॉडल होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
0: जी
1: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आपने।
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता है।
1: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पाने। मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके
1: बट
0: जाना।
1: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
0: जी
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
0: जी
1: गाने भी अवार्ड्स में थे।
0: जी
1: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात
1: देखो
0: है।
1: आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
0: हम
1: मिल
0: सबकी
1: जाए,
0: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
1: बस
0: नेशनल अवार्ड आना
1: नेशनल
0: चाहिए,
1: अवार्ड आ
0: जिसने
1: जाए।
0: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुर हुर दबंग गाना देना
0: जी सही
1: पहली बात
0: बात है।
1: अपने आप में बहुत।
0: जी
1: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से, जब हम
0: आपने
1: दोनों
0: बताया।

0: जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उससे
1: अच्छा
0: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था,
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं,
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है। तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके।
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना। और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए, और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: अच्छा
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ सामने
1: हो।
0: जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई
1: हाँ
0: वाई वाई यू, सर एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे,
1: हाँ,
0: सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: वो
0: हुआ
1: तो
0: है,
1: आए गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग
1: जी
0: अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया,
1: हाँ
0: पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड। सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट, नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। जैसे नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला, मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शवीना
0: सर
1: बन गई दबंगनी।
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान, दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में, और
1: जी
0: नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली धड़कन।
0: बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
0: पूछो
1: हो।
0: तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यही
1: यहीं
0: निकली।
1: पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
0: जी
1: ये सारे चीजें यही कहती है
0: जी
1: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को

0: अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
1: जी
0: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सब्र कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात
0: थोड़ी
1: बरतें।
0: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूं बट
1: तू देख
0: रास्ते तू
1: लेते।
0: देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सब्र होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
1: आय है।
0: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो,
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही
0: बिल्कुल नहीं कर
1: होती,
0: रही
1: और
0: होती।
1: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी
0: बिल्कुल
1: बात है शबीना
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको
0: बिल्कुल
1: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
0: बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
0: हाँ
1: थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
0: बिल्कुल
1: साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
1: जी
0: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
1: जी
0: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: सो
1: सो
0: मच फॉर
1: मच,
0: हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी केवरा करंजवार दरहोरा सिमई खरसोता परमेश्वरपुर सतकोना मेंड्रा प्रेमनगर कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कनकपुर रामपुर लुरगी महावीरगंज पेंडारी मेंढारी कोटराही मदनपुर धंधापुर उधवा कटरा कुंदी कला रेवतपुर छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला दोरना जरहाडी जोरी बिल्मा रघुपुर ढेकी डोली एरन नवापारा गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो बन कोम्बो सारंगडांड बंदरचुआ लोढ़ा आंबा डोडा पानी सोनगेरसा बीजा घाट सारूढाब देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 64 है। ये आमगांव गेरसा उदउदा पोटिया आमापाली नागदरहा कुड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बैगामार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया चक्रधरपुर धुमाबहाल पूंजी पथरा तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी कमतरा चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर नवागांव तालदादर कौहा बहरा छताल डबरा मुरुम डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों

0: में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
5: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश। लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
5: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
3: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है पुलिस परेड ग्राउंड में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है मोनाली ठाकरे, संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का है, रिकॉर्डिंग सहयोग पवन थवाइत और माइकल एक्का ने किया है।
6: 15 अगस्त की सुबह बिलासपुर की फिजाओं में आज कुछ अलग ही रंग था। मौसम सुहाना था, आसमान पर बादलों की हल्की चादर थी, हवा में घुली थी आजादी की खुशबू। आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वह दिन जो हमें याद दिलाता है कि यह तिरंगा हमें यूं ही नहीं मिला है। इसके हर रंग में संघर्ष है, हर धागे में बलिदान है और हर लहर में उन वीरों की कहानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। सड़क पर आज लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, कहीं हाथों में तो कहीं तिरंगे के रंगों में सजे परिधान। बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों का रूप धारण किए हुए थे, कोई भगत सिंह बना था, कोई रानी लक्ष्मीबाई, तो कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और कुछ नन्हे बच्चे पुलिस की वर्दी में नजर आए। इन नन्हे कदमों में भविष्य के सैनिकों की झलक थी और इन मासूम आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। गलियों और सड़कों से गुजरते हुए हर ओर सुनाई दे रहा था भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। तिरंगा हाथों में था और गर्व दिल में। राष्ट्र

भक्ति से सराबोर भावनाओं के साथ हम पहुंचे बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भव्य सजावट की गई थी। मैदान जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पुलिस बल, स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों से भरा था। समारोह के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तोखन साहू जी। उनके साथ बिलासपुर के जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल

भारत सरकार श्री तोखन साहू जी, उनके साथ बिलासपुर के जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह भी उपस्थित थे। सुबह ठीक 8:59 पर मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। उनके आगमन के साथ समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। सबसे पहले छात्रा कनक साहू द्वारा वंदे मातरम का गायन किया गया।

0: देशभक्ति के इस भावपूर्ण गायन के बाद मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा जैसे ही आसमान में लहराया, पूरा वातावरण राष्ट्रगान की धुन से गूंज उठा। परेड कमांडर ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिलाई। उसके बाद मुख्य अतिथि ने दर्शन कार से परेड का निरीक्षण किया।
1: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान।
0: बैंड की जोशीली मार्च धुन के बीच परेड की 13 टुकड़ियां अनुशासन और गौरव के साथ आगे बढ़ी। परेड का नेतृत्व कर रहे थे परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता और उप कमांडर सूबेदार कीरितेश भंडारी ने उनका साथ दिया।
2: ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ इसके पीछे
0: केंद्रीय जेल बैंड के साथ जिला पुलिस की महिला और पुरुष टुकड़ियां, एनसीसी महिला दल, होमगार्ड और एनएसएस सहित कुल 13 टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई नजर आई। हर कदम कह रहा था, माटी की खुशबू में तिरंगे का मान रहे, भारत के वीरों का सदा सम्मान रहे। जिस धरती ने दी हमें आजादी की पहचान, उस भारत माँ

0: पर सदा हमको अभिमान रहे। इसके बाद हुआ हर्ष फायर।
1: द्वितीय हर्ष फायर की तैयारी, बैंड रावगान की धुन का दूसरा भाग बजाएगा।
0: और फिर शुरू हुआ शानदार मार्च पास्ट।
1: इसके पीछे
0: परेड की सलामी ने पूरे वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का प्रदेश की जनता के नाम संदेश पढ़कर सुनाया।
2: बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारे देश प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को 8वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व माँ भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता, अखंडता और गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर जी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, गुरुवार राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर, अयातु महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने सुखमाही, संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास के उद्घोष मन के एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस के यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवादी से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है कि जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत निर्लनर 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% से हम बस्तर संभाग के

0: 39 लाख से भी अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया, साथ ही 36 नए स्कूलों की भी स्वीकृति किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपया से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुई सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसावटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं।
1: संदेश वाचन के बाद आसमान में छोड़े गए तिरंगे रंगों के गुब्बारे, केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बारे जैसे संदेश दे रहे थे, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, हमारा भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और हर भारतीय अपने सपनों के आसमान में नई ऊंचाइयां छूता रहे।

0: इसके बाद बैंड ने राष्ट्रगान की धुन प्रस्तुत की और परेड का विधिवत निष्क्रमण हुआ। परेड कमांडर और उप कमांडर से परिचय प्राप्त करने के बाद समारोह का एक भावुक क्षण सामने आया। नक्सली हिंसा में शहीद हुए 29 शहीदों के परिवारों से मुख्य अतिथि ने मुलाकात की, उनके परिवारों के पास जाकर अभिवादन किया। यह पल उन परिवारों के त्याग और साहस को नमन करने का था जिन्होंने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को खोया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली।
1: मेरे साथ दोहराएंगे कि मैं यह संकल्प करती हूँ कि
2: संकल्प करता हूँ
1: मैं किसी भी प्रकार के नशे स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार
2: मित्रों
1: तथा समाज को
2: नशा मुक्त जीवन अपनाने
1: प्रेरित करूंगी।
2: मैं अपने
1: तन मन समय एवं शक्तियों का
2: सदुपयोग करूंगा।
1: मैं नशा मुक्त स्वस्थ
2: जागरूक
1: एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। मेरा भारत नशा मुक्त भारत। जय हिंद जय भारत।
0: और फिर शुरू हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम।
3: तिरंगे की कुछ बात ही निराली है, उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी न रुकने की हिम्मत आती है।
0: 7 रंगों में सजी ऐसी प्रस्तुतियाँ जिनमें देशभक्ति, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं का सुंदर संगम दिखाई दिया।
3: तिरंगे की कुछ बात ही निराली है, उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी न रुकने की हिम्मत आती है। सिर गर्व से ऊंचा होकर कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है।

0: भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया।
1: To all the Indians, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है।
0: अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए।
2: दिल्ली पब्लिक स्कूल ने तिरंगे की कहानी प्रस्तुत की।

एलसीआईटी विद्यालय के विद्यार्थियों ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की छात्राओं ने

गोंडी बोली के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को मंच पर उतारा। जवारा, भोजली, गेड़ी और राउत नाच जैसे लोक रंगों ने समारोह को छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू से भर दिया।

पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। ये ध्वनि चित्र उन प्रस्तुतियों का है।

0: सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद सभी उपस्थित लोगों को तिरंगा शपथ दिलाई गई।
1: मैं शपथ लेता हूँ कि
2: मैं तिरंगा फहराऊंगा,
3: मैं तिरंगा फहराऊंगा
2: और अपने स्वतंत्रता सेनानियों तथा वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करूंगा।
0: देश की सेवा, देश की अखंडता, एकता के लिए जीवन भर समर्पित रहने का संकल्प। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड की विजेता टुकड़ियों को भी पुरस्कार दिए गए। परेड के वरिष्ठ वर्ग में जिला पुलिस बल महिला टुकड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कनिष्ठ वर्ग में NCC जूनियर डिवीजन बालक दल प्रथम रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला को प्रथम, LCIT स्कूल को द्वितीय और दिल्ली पब्लिक स्कूल को तृतीय पुरस्कार मिला। समारोह के अंत में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे ने आभार प्रदर्शन किया। पुलिस परेड ग्राउंड का यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं था, यह था उन वीरों को नमन जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली। यह था वर्तमान पीढ़ी का संकल्प और आने वाली पीढ़ी के सपनों का उत्सव। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, इसके रंगों में बसता भारत का अभिमान। नए भारत के सपनों को मिलकर दे उड़ान, देश हित में कदम बढ़ाएं, यही हमारा अभिमान। और अब पुलिस परेड ग्राउंड के इस भव्य आयोजन से आगे बढ़ते हैं बिलासपुर शहर के उन संस्थानों की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और राष्ट्र

0: भक्ति के साथ मनाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने देश की प्रगति में रेलवे की भूमिका और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को रेखांकित किया।
1: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है, जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
0: SECL में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। यहाँ CMD श्री हरीश दुहन ने तिरंगा फहराया और उपस्थित लोगों को राष्ट्र हित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं NTPC सिपत में मुख्य महाप्रबंधक श्री मंडल ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। CISF और बाल भारती विद्यालय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का उत्साह दिखाई दिया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय सहित बिलासपुर के विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी बच्चों युवाओं ने उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज हर तरफ एक ही स्वर था, जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी के 80वें वर्ष में आइए हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव न मनाए बल्कि अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। देश हमसे पूछ रहा है, आजादी के इस अमृत अवसर पर हम भारत के लिए क्या कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।

आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित इस रेडियो रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दिया पवन थवाइत और माइकल एक्का ने। वाचन और प्रस्तुति सहयोग सुनील चिपड़े का, संयोजन था डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का और आलेख और प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में स्थानीय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 5:33 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है सालेभाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी और खेमू ध्रुव। आप हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, भिट्टा बजाज। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। सरगांव से राजेश, हीरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी साहू। गिरिडीह झारखंड से यासीन अंजान, साइमा नमाज, हसन नमाज, अहद मिफ्रा नमाज, चाहत सादिया। राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबीय, आप सभी डोंगरगांव से। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंक।

कल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, बरका काना से अफजाल ताज शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम निप्पी साहनी मोहम्मद अफजल मलिक, गोगावा से शादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अलतमश खत्री, रमेश गोड़, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र, हेयांश कुमार चंदन, सोंगा मगरलोड से, ठकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूल, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, मुरली क्षत्रिय, हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू, आप सभी भाटापारा से, श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू मदनपुर से, सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां, तलअत जहां, फरहत जहां, रिफअत जहां, नुजहत, शाजिया, शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, जावेद अख्तर का लिखा, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया, वीर जारा फिल्म का ये गीत।

0: लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
1: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
0: अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
2: ईमेल करें, गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा, कुरासिया कालरी चिरमिरी से इंद्रभान, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कलिंद्री लहरे, कुरावली से राशिन हुसैन अंसारी, नशरीन आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, आप सभी दिल्ली से, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष, तुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, अकलतरा पोड़ीभाटा से दिलीप, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकीलाल, आप सभी दतरेंगी भाटापारा से, कोका भिलई से उत्तम सिंह, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता और विष्णु प्रसाद तिवारी, मोहाली से गुरप्रीत सिंह, जसबीर कौर, माहिकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह, रायगढ़ से सौरभ, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा निषाद, मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला, आरती सुरलकर और कुमकुम गुड़िया, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, विजया तायडे, बसंत राव भोजने, पीएस नवभानकर, आप जीगांव विदर्भ से, पटियाला से मुकेश और नीलम बत्ता, निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, यावतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, अमरावती से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ हांगोड़े, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, कोटवा नारायणपुर बलिया से, जगराओं से सुनील, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया, एताला महाराष्ट्र से शंकर, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में फिल्म कर्मा का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। हमें ईमेल मिला है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का, सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जलालाबाद वेस्ट से, बचका मल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी आप सभी भाटापारा से, सांदुल शहर राजस्थान से राम कुमार, चंद्रकला रेवाड़, मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला, आरती और कुमकुम गुड़िया, बिलईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, फजिलका पंजाब से विनोद, सीमा, लक्षिता, याशिका और विधा देवी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत, कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे, देशमुख, प्रशांत राजे, जयंत, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत, प्रणाली, सानवी देशमुख और हर्षता देशमुख, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, छिपा और पूजा परिहार, बगबुड़वा पथरिया से नरिन नेताम, कुसुम नेताम, अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश गवहनकर, बिलईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, प्रियांश और भव्या देवांगन, नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, यामिनी और उमा तिवारी आप सभी रायगढ़ से, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, तेलंगाना भोंगीर से बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, सरगांव पीपरलोड से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय, नमन और अपार ढींगिया, तीव्रता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है महेंद्र कपूर के स्वर में गुलशन बावरा का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, उपकार फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से सुनना चाहे हमारे इन श्रोता साथियों ने, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी मनीष पंवार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिनी साहिल और भारती बघेल, टिकरीपारा गंडई से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा, आप सभी दतरेंगी से, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, सामतपुर से ऋषिसेन, कंचन, रितेश और माहीसेन, निसार सलमानी, नौशाद, आलिया अयान, आप सभी तेलीवाला से, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी हिमाक्ष, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम, वामिंग थांदी, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से

राम शरण, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक। भिलाई से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा। छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई, दुखनी, सदफ, आरजू, जूही, इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले। दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवकुमार, नवीन, युवराज साहू। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र, माखीजा, काफिर, सविता, स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद डोडवानी। पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा। संजय बमारकंडेय, ममता मारकंडेय और किट्टू, आप सभी खंडवा मध्य प्रदेश से। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, अंकिता जोशी, लक्ष्मी, वैदेही जोशी और हसनिका जोशी। आप सबकी पसंद पर पेश है पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत।

बद्ध किया। पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत और इसी के साथ ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इसका शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

ईमेल करें गीत सुने। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:20 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 7 से। किसान वाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रसारण समय होगा 7:30। रात्रि 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। रात्रि 8:15 पर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोहों की समन्वित रेडियो रिपोर्ट हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फैंसी ज्वेलरी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, रंग बिरंगी राखियां, अंडर गार्मेंट्स और लेडीज पर्स के लिए आज ही संपर्क करें सहेली सुहाग भंडार बिलासपुर से। फोन नंबर है 9827187330।
0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फैंसी ज्वेलरी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, रंग बिरंगी राखियां, अंडर गार्मेंट्स और लेडीज पर्स के लिए आज ही संपर्क करें सहेली सुहाग भंडार बिलासपुर से। फोन नंबर है 9827187330।
7: श्रीमती रानी रवि सोनी, सभापति जनपद पंचायत तखतपुर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 घुटकू भाड़म तखतपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रीमती रानी रवि सोनी, सभापति जनपद पंचायत तखतपुर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 घुटकू भाड़म तखतपुर विधानसभा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार

0: कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मनावत है। प्रधानमंत्री हा आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज फहराइन। छत्तीसगढ़ में घलो स्वतंत्रता दिवस उत्साह के संग मनाए जाते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में झंडा फहरा के परेड के सलामी लीन। और मुख्यमंत्री हा आज रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग दहार ले आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी के करीन शुभारंभ। अब समाचार विस्तार ले। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मनावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज फहराइन। राष्ट्र ला स्वाधीनता दिवस के शुभकामना देवत हुए प्रधानमंत्री हा कहिन कि कोनो भी राष्ट्र तब महान बनथे जब वह अपन सपना, अपन संकल्प और अपन

0: नरेंद्र मोदी ह आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज फहराइन। राष्ट्र ला स्वाधीनता दिवस के शुभकामना देवत हुए प्रधानमंत्री ह कहिन कि कोनो भी राष्ट्र तब महान बनथे जब वह अपन सपना, अपन संकल्प और अपन सामर्थ्य के दम म आगु बढ़थे। देश अब छोटे सपना ले नहीं बल्कि बड़े सपना ले चलही। प्रधानमंत्री ह कहिन कि जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरा होही हम विकसित भारत बना के रहेंगे। श्री मोदी ह कहिन कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करे बर हमला अपन कार्य संस्कृति, सोच और काम के गति ला बदलना होही। प्रधानमंत्री ह घोषणा करीन कि अवैया एक बक्षर मा 1 करोड़ युवा मन ला AI कौशल मा प्रशिक्षित करे जाही। ओमन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तीव्र विस्तार के उल्लेख करत हुए कहिन कि ये पहल भारत के युवा मन ला AI के दुनिया मा नेतृत्व करे के क्षमता प्रदान करे मा सहायक होही। प्रधानमंत्री ह कहिन कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवार के लयिका मन बर फ्री ऑनलाइन कोचिंग के व्यवस्था करत हे। ओमन कहिन कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उपलब्ध प्रतिभा और शिक्षक मन ला एके संग्रह ला के देश के युवा मन ला निःशुल्क कोचिंग प्रदान करे बर एक संपूर्ण नेटवर्क तैयार करे जाही। प्रधानमंत्री ह कहिन कि नक्सलवाद ह 4 दशक ले भारत के आबादी ला दबोच के राखे रहीस। नक्सलवाद ले निपटे बर 3,500 ले ज्यादा जवान मन ला अपन प्राण के आहुति देले पड़ीस। श्री मोदी हा देश ला नक्सलवाद मुक्त बनाए के आह्वान करीन। एखर ले पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा स्वतंत्रता दिवस के पहली काली संझा राष्ट्र ला संबोधित करीन। राष्ट्रपति हा कहिन कि विश्व के आने आने क्षेत्र मन मा युद्ध और अस्थिरता के प्रभाव सबो देश मा मन में पड़त है। ऐसे परिस्थिति में घलो भारत के अर्थव्यवस्था तेज गति ले आगू बढ़त है। गंभीर चुनौती बने नक्सलवाद के उल्लेख करत हुए ओमन कहिन कि भारत ला नक्सल मुक्त बनाना एक बड़े उपलब्धि हराय। अब नक्सल ग्रस्त क्षेत्र मन मा विकास के धारा बहत है। बस्तर ओलंपिक्स मा खिलाड़ी मन के, बस्तर पंडुम मा कलाकार मन के और ये आयोजन मन मा दर्शक मन के भारी संख्या में भागीदारी नक्सल मुक्त क्षेत्र के प्रमाण हराय। छत्तीसगढ़ में घलो स्वतंत्रता दिवस पूरा उत्साह, उल्लास और देशभक्ति के भावना ले ओतप्रोत होके मनाए जाते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता दिवस के मौका में राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में झंडा फहरा के परेड के सलामी लीन। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री है कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प ले नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिले है। माओवाद ले मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्रा के माध्यम ले आजादी के उत्सव मनाए जाते। जौन क्षेत्र कभू हिंसा और भय ले प्रभावित रही से वहां आज शांति, विश्वास और विकास के नवा बिहनिया हो है। उमन कहिन कि बस्तर के सर्वांगीण प्रगति डबल इंजन सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता मनवा है। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार है 500 करोड़ रुपया के छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन ला मंजूरी दे है। एक अंतर्गत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 ले ज्यादा AI आधारित सेवा मनला विकसित करे जाहे। एक तहत 6 लाख विद्यार्थी और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारी मनला AI के प्रशिक्षण दे जाहे। मुख्यमंत्री है कहिन कि प्रदेश के खिलाड़ी वैश्विक मंच में तिरंगा लहरावे एकर बर खेल अधोसंरचना ला मजबूत करे के संगे संग मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू करे जाते। उमन कहिन कि मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के माध्यम ले बस्तर और सरगुजा में पर्यटन सुविधा मन के तेजी ले विस्तार करे जाही। स्वतंत्रता दिवस के मौका में राज्यपाल रमन डेका हा आज लोकभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहरा के परेड के सलामी लीन। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा ध्वजारोहण करीन। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करीन। प्रदेश के दूसर जिला मुख्यालय मन में मंत्री, सांसद और विधायक मन स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड के सलामी लीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज।

0: तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ बाती समाचार कोती आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही ए बखत के अंक मा सुकमा जिला के गतिविधि के बारे में जानकारी दे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग डहर ले आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी के शुभारंभ करीन। ये प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान, अमर सेनानी मन के शौर्य और बलिदान, वंदे मातरम के 150 बच्छर के गौरवशाली यात्रा और राज्य में सुशासन और विकास के उपलब्धि मनला प्रदर्शित करेगे है। मुख्यमंत्री है कहिन कि ये प्रदर्शनी है न केवल इतिहास के स्मरण कराते बल्कि विरासत ले प्रेरणा लेके विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प लघलो सुदृढ़ करत है। यह मौका में मुख्यमंत्री है शहर के ऐतिहासिक धरोहर टाउन हॉल और शहीद स्मारक भवन के संरक्षण साज सज्जा और नवीनीकरण पर 50-50 लाख रूपया प्रदान करे के घोषणा करें। ये चित्र प्रदर्शनी 21 अगस्त तक हर दिन बिहनिया 10:30 ले रथिया 8 बजे तक आम नागरिक खुले रही। इसने भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो डहर ले सरगुजा जिला के करजी गांव में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान ऊपर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान ला नशा मुक्ति के संदेश ले जोड़त हुए छात्र मल्ला और ग्रामीण मल्ला देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता के संदेश देगी। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 850 स्कूली छात्र मन छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति ऊपर आधारित प्रस्तुति दिन एमा सरगुजा संभाग के स्कूली छात्र मन पहलैया, दुर्ग संभाग के छात्र मन दूसरैया और रायपुर संभाग ला तीसरैया स्थान प्राप्त होइस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शील्ड और मेडल देके सबो विजेता मल्ला सम्मानित करें। स्वतंत्रता दिवस के मौका में रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेवा के अधिकारी और जवान मल्ला उखर कर्तव्य निष्ठा असाधारण कार्य कुशलता और विशिष्ट सेवा मनबर प्रतिष्ठित पदक और राज्य स्तरीय पुरस्कार मल्ले अलंकृत करीन। समारोह में रक्षित केंद्र धमतरी के सहायक उप निरीक्षक राम अवतार सिंह राजपूत ला राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक ले सम्मानित करेगी। एकरे संग ही सराहनीय सेवा अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था और आधुनिक नवाचार मनबर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनसंग 10 जन पुलिस कर्मी मल्ला भारतीय पुलिस पदक प्रदान करेगी। उन्हें आपदा प्रबंधन राहत कार्य और जनसेवा मन अद्वितीय भूमिका निभाए बर नगर सेना राजनांदगांव के उत्तम कुमार साहू और रायपुर के लांस नायक जोगेश्वर कुमार धीवरला गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मनावत है। प्रधानमंत्री हा आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज फहराई। छत्तीसगढ़ में घलो स्वतंत्रता दिवस उत्साह के संग मनाए जात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में झंडा फहरा के परेड के सलामी लीन और मुख्यमंत्री है आज रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग डहर ले आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी के करीन शुभारंभ। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

0: ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के लिए हमें ईमेल भेजा है अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी, सिद्धार्थ गोंडा ने, कोरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया जमशेदपुर से, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश, आशु और सोनाली नारंग, राजकोट से जगदीश और प्रवीण पुजारी, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, राजेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है देश प्रेमी फिल्म के लिए मोहम्मद रफी के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत।
1: के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और किस परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसे मंद संस्थान नेट फेलोशिप एकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपर्क करें 8035249222।
3: लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
4: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: ईमेल करें, गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत

श्रोताओं की पसंद पर हमने लिया है फिल्म क्रांति से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश, लता मंगेशकर की। गीतकार हैं संतोषानंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पसंदकर्ता श्रोता हैं आप सभी कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, दयापुर बावली से गजानन, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका येले, कोलगांव कुम्हार गली से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार, वडशिंगी बुलडाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार, राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, छीपा और पूजा परिहार, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तान्या नारंग, दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, आप सभी बलौदा से, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी आप गुजरात से, यवतमाल से जयराम शिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता, सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, कातलबोड़ नांदघाट से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टीकेश्वर और ऋतु राजपूत। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है क्रांति फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता, वीणा नेहा और मोनिशा साहू, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, नागपुर से प्रकाश रभाड़े, भारती जहानवी, वैष्णवी और हर्षल रमभाड़े, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनशीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, अकरम अमीन अर्श और आतिका आप लुतरा खमरिया से, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, रसेरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डीकेश, वासु, डाली और पूर्वेश साहू, सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव पैठण से, गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र और कुसुम नेताम, जमानिया से ए

जायसवाल, डिंपल आशुतोष, अभिनव जायसवाल, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, राजस्थान गोविंदपुर सीकर से दातार सिंह, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा, आप सभी गांव खरकड़ा चौबीसी से, महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश सिंघई, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, नीरज शुभम, सौरभ रावत, अनुश्री धनुष, धनश्री बुरांडे, उषा और अनिल बुरांडे, पांडर कावड़ा से, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद अजरा तबस्सुम, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, कमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, दाली, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, अलकबीर, डोंडी लोहारा बालोद से, पंजाब पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरुमंत कौर, मनु, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, चनहेटी बरेली कैंट उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मुकेश और साथियों के स्वर में प्रेम धवन का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश।

0: आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल में किया जाएगा प्रशिक्षित। मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए होगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और बस्तर संभाग के सैकड़ों गांवों में दशकों बाद भयमुक्त वातावरण में उत्साह के साथ किया गया ध्वजारोहण। अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब वह अपने सपनों, अपने संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। देश अब छोटे सपनों से नहीं बल्कि बड़े सपनों से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव है। उन्होंने देशवासियों से सप्त धारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत के युवाओं को AI की दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करने में सहायक होगी।
8: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन

0: ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उपलब्ध प्रतिभा और शिक्षकों को एक साथ लाकर देश के युवाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए एक संपूर्ण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। दशकों तक गंभीर चुनौती बन रहे नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की, बस्तर में कलाकारों की और इन आयोजनों में दर्शकों की भारी संख्या में भागीदारी नक्सल मुक्त क्षेत्र का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में 17 प्लाटूनों ने मार्च पास्ट किया। इस बार बिहार पुलिस की टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी है।
2: हमने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। 6 लाख विद्यार्थियों एवं 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में ध्वजारोहण किया। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों तथा जवानों को उनकी कर्तव्य निष्ठा, असाधारण कार्यकुशलता और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित पदकों और तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों से अलंकृत किया। समारोह में रक्षित केंद्र धमतरी के सहायक उप निरीक्षक रामावतार सिंह राजपूत को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सराहनीय सेवाओं, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आधुनिक नवाचारों के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित 10 पुलिस कर्मियों को भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया। वहीं आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों और जनसेवा में अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए नगर सेना राजनांदगांव के उत्तम कुमार साहू और रायपुर के लांस नायक जोगेश्वर कुमार धीवर को गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 850 स्कूली विद्यार्थियों ने

0: छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इनमें सरगुजा संभाग के स्कूली विद्यार्थियों को पहला, दुर्ग संभाग के विद्यार्थियों को दूसरा और रायपुर संभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शील्ड और मेडल देकर विजेताओं को सम्मानित किया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग के सैकड़ों गांवों में दशकों बाद भयमुक्त वातावरण में उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इनमें दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के कई गांव शामिल हैं। इन गांवों में आज तिरंगे का फहराना बस्तर क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा।
1: बस्तर में इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहा। नक्सलवाद के प्रभाव के खत्म होने से सैकड़ों जगह पर पहली बार भयमुक्त माहौल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कई गांव में दशकों बाद पहली बार ध्वजारोहण किया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा जिले में 3-3 एवं बीजापुर में 11 जगह पर पहली बार ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण हर्ष और उत्साह के साथ आयोजन में शामिल हुए। दंतेवाड़ा जिले में श्री केदार कश्यप ने ध्वजारोहण किया एवं मार्च पास्ट सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश मिश्र।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान, अमर सेनानियों के शौर्य और बलिदान और वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और राज्य में सुशासन तथा विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों, टाउन हॉल और शहीद स्मारक भवन के संरक्षण, साज सज्जा और नवीनीकरण के लिए 50-50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। यह प्रदर्शनी 21 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सरगुजा जिले के करजी गांव में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान को नशा मुक्ति के संदेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने रैली निकालकर देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सुकमा जिले की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल में किया जाएगा प्रशिक्षित। मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए होगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और बस्तर संभाग के सैकड़ों गांवों में दशकों बाद भयमुक्त वातावरण में उत्साह के साथ किया गया ध्वजारोहण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत।

0: स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और उत्कृष्ट परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसेमंद संस्थान नेट फेलोशिप एकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपर्क करें 8035249222।
0: स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: इस स्वतंत्रता दिवस अपने सपनों को सफलता की नई उड़ान दे। पिछले 7 वर्षों से अधिक के अनुभव और उत्कृष्ट परिणामों के साथ UGC नेट CG सेट की तैयारी के लिए आपके भरोसेमंद संस्थान नेट फेलोशिप एकेडमी बिलासपुर की तरफ से आप सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: तो संपर्क करें 8035249222।
1: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
2: लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
3: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के समस्त नागरिकों, सम्मानित रेल यात्रियों, रेल कर्मियों एवं रेलवे से जुड़े सभी ग्राहकों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने की प्रेरणा देता है जिनके साहस और समर्पण से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह दिन हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी देता है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय एवं बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का संदेश।
1: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
4: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुने सुगम संगीत का अगला गीत।

0: प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रण करें, नशा नहीं करूंगा, नशे से स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का भागी बनूंगा। स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक बिलासपुर की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का पर्व है आया, घर घर तिरंगा लहराया, मेरा देश मेरी शान, भारत मेरी पहचान। तनिष्क रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर की ओर से सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं लायन मनीष कुमार चंदेल, सचिव लायंस क्लब बिलासपुर। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी शहरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
2: नमस्कार, मैं लायन हरदीप सिंह सलूजा, अध्यक्ष लायंस क्लब बिलासपुर, सभी शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
3: धर्मराज ट्रेडर्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मकान बनाने हेतु छड़, सीमेंट, रेत, गिट्टी, सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, बेस्ट क्वालिटी और कम कीमत के साथ एक ही छत के नीचे। धर्मराज ट्रेडर्स, मंगला रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फोन नंबर है 7566441238।
4: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से।

0: श्रीमती रानी रवि सोनी, सभापति जनपद पंचायत तखतपुर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 घुटकू भाड़म तखतपुर विधानसभा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं लायन मनीष कुमार चंदेल, सचिव लायंस क्लब बिलासपुर। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी शहरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
2: नमस्कार, मैं लायन हरदीप सिंह सलूजा, अध्यक्ष लायंस क्लब बिलासपुर, सभी शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
3: धर्मराज ट्रेडर्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मकान बनाने हेतु छड़, सीमेंट, रेत, गिट्टी, सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, बेस्ट क्वालिटी और कम कीमत के साथ एक ही छत के नीचे। धर्मराज ट्रेडर्स, मंगला रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फोन नंबर है 7566441238।
0: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से।

श्रीमती रानी रवि सोनी, सभापति जनपद पंचायत तखतपुर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 घुटकू भाड़म तखतपुर विधानसभा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम किसान वाणी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
5: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
7: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
8: तुलसी बहनी, गुड बात कर दे रेन, और इतना अच्छा गीत घलोक सुना सुन रेन, संगवारी मल्ला जोहार तो करे नहीं।
9: हाँ दीदी,
8: संगवारी हो, हमारे दोनों डाल ले आप मल्ला,
9: जय जोहार।

0: राम राम मोनिका दीदी।
1: राम राम तुलसी और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: संगवारी हो बेरा है किसान वाणी के, प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: तुलसी, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो भाई हमारे संगवारी मन ला स्वतंत्रता दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: और संगे मा आप मन ला घला हुए दीदी।
0: तहूं लग स्वतंत्रता दिवस की बधाई भाई। आज तो तहूं हा, एक तरह से देखे जाए तो स्वतंत्र होए सबका दिन बाद दिखत है।
1: का बतावे दीदी, घरे के काम बूता में देख ना बंधा गे रहे हूँ। अति दिन बाद ना ये ब्याज बेरा हम मिलिस तो मैं कहूँ चल स्वतंत्रता के तिहार ला मनात मनात महूँ आ जाता हूँ कहीं।
0: बड़ सुघर सोचे, ये तो सही है कि हमन कहूँ भी कोनो काम में बंद जतन ना, तो एक तरह से देखे जाए तो हम आजादी हमार खत्म हो जाती है, छिन जाते थोड़ बेरा बड़े ही सही। भाई अब ये विचार कि जब वो बेरा हमन आजाद नहीं रहे तो हमन ला कितना उद्यम करे पड़े रही से आजाद होए खाते।
1: बिल्कुल, अब ये बात ला जिन हमार पहली के पुरखा मन है तीज मन हा और बढ़िया ढंग ले बता सकते दीदी। काबर के ओ मन हा ओ बेरा ला जिए है अपन अनुभव करे है। तब देख दीदी, ये तो पहली की बात हो गए, फिर आज के जिन तिहार है तिला तय कौन ढंग ले मनाए तिला बता तो भला।
0: मेहा तो बस ये रही से तुलसी की ना, जगह जगह लड़का मन है झंडा पहन स्कूल माँ और कतकोन जगह में, तो फिर मैं गे रहे हूँ मोहल्ला बड़ सुघर लगीस। और संगी संग में देखियो नाने नाने लड़का मन है ना बड़ सुघर सुघर प्रस्तुति देत रही है। और जब प्रभात फेरी निकली तो बड़ सुघर लगीस देख के, लड़का मन इतना उछाल है एक दूसर के आगू पाछू चला थे, बड़ सुघर सुघर नारा लगावा थे। तो मोला तो मोर बचपन याद आ गए, काबर की ननपन में हमू मन इसने करन।
1: और नान्हे नान्हे लड़का मन बिहान ले दीदी हाथ में सुघर तिरंगा झंडा ला धरे एक लय में गावत भारत माता के जयकारा लगावत आज गली गली में रेंगा थे। कतका बढ़िया लागे से देख के ना उमल्ला माने एक दिन भर ही सही कहा पर देशभक्ति के भावना सबके मन में जाग जाते। लड़का उमल्ला अवसर मिलते कि हमार देश हा काए ओकर बारे में ओकर विभिन्नता के बारे में ओकर महत्व के बारे में जाने के।
0: तुलसी देखिए ना, एक दिन भर देशभक्ति जागते ऐसे बात नहीं है। देशभक्ति तो हमारे मन मा दिल मा हमेशा रहती
1: है,
0: बस ये है कि ओला दिखाए के जिन बेरा होते ना वो हमारे मन खातिर भले एक दिन बरात है, फिर ये है कि जिन हमारे देश के सेना है जिन जवान मन देश के सीमा में है या फिर गहन की वायु सेना है जल सेना है थल सेना है, तो ये मन तीनों सेना है वो मन अपन देशभक्ति ला हमेशा हमला बतात रहे थे।
1: बिल्कुल, और दीदी जैसे देश के हमारे जवान मन हा सरहद में खड़े होके दिन रात देश के सेवा करा थे रक्षा करा थे, तो देखे जाए तो हमार किसान भाई मन घलो कहा तो बिल्कुल उसने डट के खेत मा ना पानी देखा है ना बरसात ना घाम देखा है ना ठंडा खड़े रहते अपन कार्य में बिल्कुल लगे रही थे काम लग करे, तो उहू हा कही बेटा देश के सेवे चे तेरे से तीर हमार जिन पूर्व प्रधानमंत्री जी मन हा कहे रही ने जय जवान जय किसान।
0: भाई तुलसी देख हमार जिन किसान संगवारी मन है ना वो मन अपन बुता खाते पहली ले तैयारी करते।
1: बिल्कुल,
0: और ये बात ला हमू मन जानते कि भाई जब एक बेरा इसे रही से कि हमारे देश में खाए की कमी हो गई रही तो वो वक्त हरित क्रांति जेखर उद्देश्य चाहिए रही से कि गुणवत्ता वाले फसल ज्यादा ले ज्यादा फसल के उत्पादन हो सके। और आज ये बेरा हो गया है कि हमन कतकोन देश में अनाज पहुंचावा थन।
1: बिल्कुल,
0: मैंने हमन वो जगह ले ये जगह तक पहुंच गए हैं। और अवैया बेरा में हमारे ये उद्देश्य रही कि हमन औ आगू बढ़ान और हमारे देश में जितका भी उत्पादन होते ओकर ज्यादा ले ज्यादा जिनिस की हमन तो ऐसे है कि ज्यादा ले ज्यादा निर्यात कर पान। भाई ऐसे है कि एखले हमारे देश के पूंजी तो बाढ़वे करी संगे संग हमन विकास के रद्दा में औ आगू बाढ़।
1: सही बात है दीदी, और देखबो तो हमन विश्व पटल में हमारे देश ल सब मनखे मन जानी और हर जगह में हमारे भारत माता के गुणगान घलो हो ही दीदी।

0: तो तोर बात एकदम सिरतोन है भाई। हमारे किसान संगवारी मन के उदीम जिन है ना, वो हमेशा लगे रही थी ये चीज़ में कि कोनो ना कोनो प्रकार ले, चाहे मन पशुपालन करें, चाहे वो मन हाँ मछली पालन करें, बदक पालन करें, या फिर लघु उद्योग ले जुड़े रहे हैं, तो सारी चीज़ ले जुड़ के कहूँ ना कहूँ अमन ये क्षेत्र में अपन आपला आगू बढ़ावा थे, और अपन साथ साथ हमारे देश के विकास में भी अपन भागीदारी ले निभावा थे।
1: बिल्कुल सही कहा था दीदी। तो जैसे अभी बात करें है लघु उद्योग के, है ना, तो लघु उद्योग ला ऐसे कई देते ना लघु उद्योग, तो कई जन मनखे मन अभी घलो नहीं समझे लघु उद्योग काला का थे उद्योग की, है ना। ता उनका सबले पहले दिमाग में आते बड़े बड़े कारखाना ए मन है। ता हाँ मन बात करा थे संगवारी हो लघु उद्योग जिला एक ठन कमरा ले घलो आप मन शुरू कर सका था, है ना दीदी।
0: सही बात है। अब देख गुड बात तो बड़े कन है, फिर हमारे विशेषज्ञ मन की बारी है क्रम आज की सलामा, तो बता हमारे विशेषज्ञ मन ले कहा गोट करे हैं तिल्ला।
1: देख दीदी, जैसे अभी आप मन गोट बात करत रहे हो कि बुदा का अम्मा हमार संगवारी मन ना दिन रात खेती के भिड़े रहते, कि किसान भाई और बहनी मन घलो, फिर ना कहूँ हमला सही मार्गदर्शन मिल गए और हम सही प्रबंधन के तकनीक ला जान डरेन, तो ओतकेज मेहनत ओतकेज भूया मा अधिक उत्पादन हमला मिल जाते। और यह सिर्फ धान में नहीं बल्कि हर फसल में लागू होते ये नियम हक दे। तो आज के जिन हमार सलाह है ना वो हर हवा धान और खरीफ फसल में वैज्ञानिक प्रबंधन माने वैज्ञानिक ढंग ले कृषि का देवा, और ये विषय में हमला जानकारी देवा थे वह कमलकांत लोधी जी मन। आप मन हो प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले, और आप मन तिरन गोट बात ला सकेल के लाने हैं हमार मोनिका दीदी हा। तो संगवारी हो आवाज सुनथन ये सुघर गोट बात ला।
0: संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा हवा, और एकर खातिर हमारे जिन किसान संगी मन ही उमन अब्बड़ मेहनत करते हैं, और एकम रकम के धान के किस्म घलो हुआ थे। अब ये बात के ध्यान रखना कि भाई एकर खातिर जिन मौसम होते हो कितना लाभकारी है, एकर कौन ढंग के प्रबंधन करे जा सकते जिस हमला ज्यादा ले ज्यादा लाभ मिलाए, तो ये खातिर गोट बात करबो कि धान के और खरीफ फसल मन के वैज्ञानिक प्रबंधन कौन ढंग ले करे जा सकते। तो ये विषय में गोट बात करे खातिर हमारे संग है कमलकांत लोधी जी। हाँ, आप मन हाँ प्रक्षेत्र प्रबंधक है कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में। कमलकांत जी, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: जी नमस्कार किसान भाइयों।
0: जैसे कि आज हमारे विषय है कि धान और खरीफ फसल मन के जिन वैज्ञानिक प्रबंधन होते हैं वो कौन ढंग ले होते, तो सबले पहले तो ये बताते हो कि जैसे अगस्त के जिन महीना होते ओला धान फसल पर सबले ज्यादा महत्ता वाले महीना माने जाते, ऐसे का पर है?
2: अगस्त महीना में धान के फसल हा एक्टिव टिलरिंग स्टेज में रहते, मतलब सक्रिय कल्ला निकलते, उमा सक्रिय कल्ला निकलते, एमा मैक्सिमम जो कल्ला जो निकलते वही में बाली आते। तो ये जो है हमारे अगस्त माह बहुत ही सक्रिय अवस्था रहते कि उमा कल्ला निकले, एकर स्थिति उमा अच्छा से पोषक तत्व के प्रबंधन, कीट प्रबंधन, जल प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है अगस्त माह में। अगस्त माह में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी रखना बहुत जरूरी है, और एमा जो है 20 से 25 दिन के बाद जो है हमारा टॉप ड्रेसिंग मतलब पोषक तत्व के मात्रा जो नत्रजन 3 भाग में देथन उमा से एक भाग दूसरा भागला ये समय देना बहुत ही आवश्यक होते, और खेत के समय समय पर निरीक्षण करना जरूरी है ताकि तना छेदक जैसे बीमारियां ना आए।
0: जी कमलकांत जी, एक बात मनवाते कि भाई देखो हर पौधा ला हर जिन हमार फसल है ओला पोषक तत्व की जरूरत पड़ती। अब जैसे हम धान उगाए हन तो धान में कौन कौन से पोषक तत्व की मात्रा हमारे महीना में दे सकते?
2: हाँ, ये जो अगस्त के महीना है वो जैसे हम पहली बताएं सक्रिय कल्ला अवस्था है, तो ये समय हम मतलब बहुत ही जरूरी है यूरिया देना। 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से हमन यूरिया देबो, और पोटास जो है हम 10 से 12 किलोग्राम पोटास देबो। अगर हम शुरू में पोटास नहीं देहन तो ये समय हम मतलब पोटास देना है, पोटास दे से जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते पौधा के। और एकर अलावा अगर आपके जमीन में जो है जिंक की कमी है, जिंक की कमी कैसे पता चलिए आपला, नए जो पत्ती है वो पीला पड़ जाए, किनारे किनारे जो है आपके भूरा कलर हो जाए, भूरा धब्बा लग जाए, और पौधा मन छोटे छोटे बैठे टाइप के हो जाए, तो जिकर से हमन ला पता चलते कि ये जिंक की कमी है एला खैरा रोग का थे। अच्छा। तो एकर लिए हमन 10 किलोग्राम जिंक जो है प्रति एकड़ में देथन।
0: और जैसे कि अभी धान फसल है भाई खरपतवार उला ज्यादा नुकसान पहुंचाते, तो कौन कौन से खरपतवार हमारे जिन धान की फसल है ओला नुकसान पहुंचाते हैं, और एकर कौन तरीका ले हमन नियंत्रण कर सकते हैं, ये विषय में थोड़कुन विस्तार ले बताते हो।
2: जैसे हमन अभी धान के फसल अभी एक्टिव टिलरिंग स्टेज में है, अगस्त के माह है, तो हमन बुआई कर चुके हैं, ओकर पश्चात जो अब जो आते सावा इकाइनो क्लोआ क्रसगेली के नाम से आते साइप्रस इरी जो मोथा होते

0: जिला गेंगरुआ घास भी कथे, नरजवा कथे, एकर अलावा जलकुंभी आते, कौवा कैनी आते। तो ये सब के नियंत्रण के लिए हमन 20 से 25 दिन पश्चात, हमन का बुआई के 20 से 25 दिन पश्चात 20 पायरीबैग सोडियम 10% SC 100 से 120 ml प्रति एकड़ की दर से हमन छिड़काव करथन। एक अलावा हमन फिनॉक्सोप्रोपी इथाइल जो है हमन 320 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल के हमन छिड़काव करथन, जेकर से ये सब खरपतवार के नियंत्रण हो जात। ध्यान रखो किसान भाइयों, अगर हम धान के फसल लेतन तो 20 से 45 दिन तक हमन ला धान ला जो खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। अगर हमन एला नहीं रखन मुक्त तो हमार जो उत्पादन जो है 40 से 80% तक घट सकते। ते कारण हमन ला ये ध्यान रखना, ये जो है आपके 20 से 45 दिन क्रिटिकल क्रॉप कॉम्पिटिशन समय रथे, ते कारण ये पीरियड में हमन ला खरपतवार मुक्त रखना बहुत जरूरी है।
1: जी कमलकांत जी, एक बात होते भाई कि कोनो भी फसल लगातन कीड़ा बीमारी रोग के समस्या आवे करते, तब तो जैसे धान के अमन बात करतन, तो धान में कौन कौन से ऐसे कीड़ा होते जेखर ले फसल ला नुकसान हो सकते, वेखर नियंत्रण कौन ढंग ले हमन ला करना चाहिए?
0: ये जो महा में सबसे ज्यादा प्रकोप होते येलो स्टेम बोरर के, तना छेदक जिला कथन हमन। तना छेदक जो शुरू में पौधा में होते तो ऊपर वाला जो है आपके पत्ती जो है पीला हो जाते, पीला होके पैरा टाइप दिखते, तो एला हमन काय कथन डेड हर्ट कथन। और जब बाली आते तब ओकर जो है बाली जो है सूख जाते, तब बोला व्हाइट ईयर कथन, व्हाइट ईयर कथन। तो ये तना छेदक के प्रकोप से बचे पर हमन ला फेरोमैन ट्रैप लगाना चाहिए। 5 नग फेरोमैन ट्रैप पर रहते तेला जो है हमन 5 नग 1 एकड़ में लगाना चाहिए। एकर अलावा क्लोरान एंट्री लीप रोल जो है दवा होते ओला जो 60 ml प्रति एकड़ की दर से हमन ला छिड़कना चाहिए। एकर वाला ये समय हमन लीप होल्डर पत्ती मोड़क एक बीमारी होते, जिमा जो है पत्ती के नीचे मोड़ के जो है आपके इल्ली जो है घुसे रहते और हरा भागला खाते, तो एक नियंत्रण के लिए इमम एक्टिन बेंजोएट 5 SG 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमला छिड़काव करना चाहिए। और ये समय ब्राउन हॉपर जो भूरा फुदका का थे वो ओकर प्रकोप बहुत ज्यादा होते, डायनोफ्यूरान 20 SG 80 ग्राम प्रति एकड़ के दर से हमला इमा डालना चाहिए।
1: जी अभी जैसे कि आप मन कीड़ा के बारे में बताओ, अब हम जैसे रोग के विषय में घलो आपले जानकारी चाहत रहे कि एमा कौन कौन से रोग लगते ओखर वैज्ञानिक तरीका ले नियंत्रण कौन ढंग ले कर सकथन?
0: ये महा सबसे ज्यादा बीमारी लगते ब्लास्ट। ब्लास्ट कैसे दिखते, आप आंखी के आकार या नाव के आकार के रहते जिमा चारों तरफ जो है भूरा धब्बा बन जाते, ये होते ब्लास्ट। ब्लास्ट के नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लाजोल 75 WP 120 ग्राम प्रति एकड़ के दर से हमन ला छिड़काव करना चाहिए। दूसरा बीमारी होते सीध ब्लाइट। सीध ब्लाइट जहाँ पानी भरे रहते ओकर ऊपर से तना से जो फैलाव होते, जो कि थोड़ा फीकापन लेते हुए ऊपर पैरा टाइप के बनत बनत बनत धब्बा टाइप के जो है धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़त जाते, एक नियंत्रण के लिए वेलिडामाइसिन 3% जो है आप 400 ml प्रति एकड़ के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। एकर वाला बैक्टीरियल लिप ब्लाइट होते जेकर नियंत्रण के लिए हमला संतुलित उर्वरक देना चाहिए, इसमें हमला नाइट्रोजन की मात्रा कम देना चाहिए और एकर अलावा हमला 10 से 12 किलोग्राम पोटास की मात्रा ज्यादा देना चाहिए ताकि पौधे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े।
1: जी कमलकांत जी, अब जाति बिराती हम ये जानना चाहो कि जैसे कतकुन वक्त वर्षा कम होते या ज्यादा होते, तो फिर ऐसे समय में हमारे किसान संगवारी मन का कर सकते?
0: किसान संगवारी हो जैसे कि अचानक हमार वर्षा कम हो गए तो हमें कम पानी वाले फसल ला लेना है। जैसे कि कम पानी वाले फसल का होते रागी हो गए, अरहर हो गए, मूंग हो गए और उड़द हो गए, ये सब फसल ला हमें लेना चाहिए, जेकर से का होते नमी संरक्षण भी होते और आपके जो समय में आपला जो जोखिम होते वर्षा कम होने के जोखिम होते अगर भुगतान हो जाते, ये सब फसल ला हमन लेतन था।
1: और ज्यादा वर्षा हो मंग?
0: ज्यादा वर्षा होते तो आप ये ध्यान रखो कि मेड़ ला जो है आप खोल दे रहो, आपके धान के खेती में जो 2 से 5 सेंटीमीटर तक ही पानी रहना चाहिए, ऊपर से ज्यादा अतिरिक्त पानी आते तो मेड़ ला खोल दो, अतिरिक्त पानी ला हमन ला बहा देना चाहिए।
1: जी कमलकांत लोधी जी, आप मन बड़ सुघर सुघर और विस्तार ले जानकारी बताए कि भाई धान की जिन फसल है मन ये महीना में ओखर कौन प्रकार ले प्रबंधन कर सकते हैं, ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: संगवारी हो, अभी आप मन सुने।

0: खेत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: तुलसी हमर संगवारी मन खातिर एक सूचना है और ये सूचना जुड़ी है हेलो किसानवाणी क्रम ले तेनला संगवारी मन ला बता देथन। संगवारी हो अवैया मंगलवार 18 अगस्त 2026 के प्रसारित हुआ हेलो किसानवाणी के दरी के विषय हुई शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी और ये विषय मा आपन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी। हाँ, आप मन हा वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्गमा। संगवारी हो आप मन ये विषय ले जुड़ी अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमार फोन नंबर आप मनला बता देते हैं। हमार पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 18 अगस्त 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक और एक प्रसारण के बाद करण संगवारी हो तो ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में होगी। भाई आप मन के फोन कॉल के अग्रह रही और सूचना ही चे सिरावत है।
4: अब दीदी अब बेरा हो गए कृषक प्रश्न मंच के जेकर हमार संगवारी मन ला ना अब्बड़ उत्सुकता ले अगोरा रहते काबर के एमा हमन हा पूछथन आज के प्रश्न ला और पाछू हफ्ता के प्रश्न के जवाब और सही जवाब देवैया संगवारी मन के नाम ला।
3: तो ऐसे है कि हमार जेन संगवारी मन हमार सरी क्रम ला बड़ ध्यान लगा के सुनत हो ही देख चिट्ठी मिले इसमें तो मन लिख देते फिर वो क्रम ही ओला जेन ध्यान लगा के सुनते गुंथे ना तो हमार आज के प्रश्न ला झटकुन मेल कर देते ओकर जवाब ला।
4: बिल्कुल, तो हमार आज के प्रश्न है जिंक के कमी ले कौन सा रोग होते। प्रश्न फिर सुनाओ आप मन, जिंक के कमी ले कौन सा रोग होते।
3: संगवारी हो सही जवाब पर मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com और पाछू हफ्ता जेन हमार प्रश्न रही से वो खर सही जवाब बताही हमार तुलसी बहनिया।
4: बिल्कुल, तब पाछू हफ्ता के प्रश्न पहली बता देता हूँ दीदी। पाछू हफ्ता मन आप मन तिर पूछे रहे संगवारी हो हरी पत्ते खाद जो होते वह कौन कौन से पेड़ के पत्ता के उपयोग ले बनाए जाते और सही उत्तर है नीम, ग्लेरिसिडिया, करंज, सुबबुल और महुआ और सही जवाब भेजिए हमार संगवारी मन के नाम ला बता दे दीदी।
3: तो सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम ला बता देता हूँ। सही जवाब भेजिए संगवारी मन है गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना मानवेंद्र राकेश साहू, रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई ले हैं सुशील जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौरभ शुभम श्रेया और शौर्य जैन, लोरमी ग्राम चचेरी ले हैं अमन मरावी, चमन मरावी, सुमित रिंझा और तनु राही मरावी, धमधा ग्राम सुखरी कला ले हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल, कोई ग्राम भंगीटूला ले हैं ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई फिरतराम और मालती ध्रुवे मन, ग्राम भड़गा कोदवा गोडान ले हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी और राहुल मरावी, ग्राम परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले हैं ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी खुमिंद्र और तुसानी मसिया, ग्राम कोटनी पानी डोंगरगढ़ ले हैं कैलाश कुमार मंडावी, श्रीमती लीलेश्वरी मंडावी, रूपेश गर्मा दादू और छनिष्का मंडावी, बठेना पाटन ले है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली नीला वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर और मिथिलेश टोमिन बंछोर, गांव तेंदुभाटा मगलोड जिला धमतरी ले है उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद मन, चरडोंगरी पिपरिया ले है दुर्गाराम साहू, अजय जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती इंद्राणी माया साहू मन, अडान नानघाट ले है माखन वर्मा, चांदनी

0: राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले हैं शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण, चुआ, कन्हैया और निर्मला यादव मनहा। मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू मनहा। तो भाई जम्मो संगवारी जनमन सही जवाब लिख के भेजे या मल्ला मेल करे मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो भाई तुलसी बहनी, आज जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के त्योहार हमन मनावा थन, इतना सुगर सुगर प्रस्तुति लेकर मन के देखा था, जगह जगह झंडा फेरे देखा था, अभी तो भाई घरों घर तिरंगा लहरावा थे। तो ये बता कि हमार किसान वाड़ी माँ हमन का विशेष करे हन?
1: तो दीदी देख, अभी तो अब बेरा हाथ के कन हो गए, संगवारी मल्लंग भेंट घलव हो गए, तो मैं कहता हूँ तिहार है तो अभी चलते छे ना, ऐसे नहीं के भाई रात हो गए तो सिरा के तैसे, तो हम अन्हा देशभक्ति ले बढ़िया डूबे सुग्घर असन गीत ला सुन लेथन और संगवारी मल्ल सुना देथन।
0: तो संगवारी सुनथन ये सुग्घर सुग्घर गीत जे लगाए सीताराम साहू और संगवारी मन।

0: संगवारी हो, अभी आप मन ह देशभक्ति ले जुड़े ये सुग्घर असन गीत ल सुने हो, जिला पंसवर ले सजाए रहीन है सीताराम साहू और साथी मन।
1: तो देख तुलसी बहनी, गोट बात करते करत हमर मन के जाए के बेरा भी हो गए। तो संगवारी हो, ये रही से किसानवाणी, प्रायोजक रहीन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और संगवारी हो, आप मन ला बता देतन मौसम के हाल। तो भाई मौसम विभाग ले मिले जानकारी अनुसार प्रदेश मा कई जगह मा हल्का ले मध्यम वर्षा होए की संभावना है और एक ले दो जगह मा बहुत भारी वर्षा संग गरज चमक संग वज्रपात होए की संभावना है। रायपुर की हमन बात करन संगवारी हो, तो रायपुर मा बादल छाई रही और कुछ एक जगह मा गरज चमक संग वर्षा होए की संभावना है। और अब आप मन ला बता देथन कृषि उपज मंडी ले मिले बाजार भाव। संगवारी हो, धान के भाव है 2500 रुपया ले 2576 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव है 2430 रुपया ले 2476 रुपया प्रति क्विंटल और तिवरा के भाव है 3100 रुपया प्रति क्विंटल।
0: आउ दीदी, जावत जावत संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम के बारे में घलो बता देते हैं। तो संगवारी हो, हमार कल के कार्यक्रम में हमार आज के बाद के विषय रही जैविक खेती में नीम के उपयोग। और आज के सलाह में आप मन सुनो धान में संतुलित उर्वरकों का उपयोग, ये विषय में हमला जानकारी दी ही विषय वस्तु विशेषज्ञ मनीष कुमार वर्मा जी मन। आप मन हो कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्गले अभी कल ले गोट बात ला सकेल के लाने रही हमार नीतू दीदी हा।
1: तो संगवारी हो, गोट बात के संगे संग हो ही कृषक प्रश्न मंच के क्रम, जेमा हो ही आज के प्रश्न, पांचों अब तक के प्रश्न और सही जवाब संग सही जवाब विजेता संगवारी मन के नाम और हो ही गीत संगीत के मधुरता। तुलसी बहनी, अब हो गए है जाए के बेरा, घड़ी के सुइया मल्ला इशारा करते है कि संगवारी मल्ले विदा ले के बेरा हो गए है। तो संगवारी हो, देवा विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम।

0: अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही
1: संसद में ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से

जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा

द्वारा पेड़ संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया, जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे, जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को

पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम

0: ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोहों की समन्वित रेडियो रिपोर्ट कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोह की समन्वित रेडियो रिपोर्ट लीजिए, अब सुनिए।

0: पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ की पावन धरा भी स्वाधीनता दिवस की खुशियों की साक्षी बनी। अंबिकापुर से अंबागढ़ चौकी तक, कबीरधाम से कोंटा तक, क्या नदियां, क्या पर्वत, क्या वन, क्या मैदान, सभी 80वें स्वाधीनता दिवस की उमंग में कहीं आसमान पर छाए बादलों के संग महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को याद कर रहे थे, तो कहीं खिली हुई धूप में प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ने के संकल्प को दोहरा रहे थे। सरगुजा की हरियाली भी आज स्वाधीनता दिवस के हर्ष में यूं घुल मिल गई थी कि सुबह से ही हर चेहरे पर राष्ट्रीय पर्व की खुशियां झलक रही थीं। सुनते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर की ये रिपोर्ट।
1: जिस मुक्त गगन का वीरों ने सपना देखा था, जिस जमी को अत्याचार से छुड़ाने का उन्होंने ख्वाब देखा था, आज उस आजाद हिंद की सरजमी पर हमने देश का 80वां स्वतंत्रता

दिवस मनाया। आज 15 अगस्त सन 2026 को अंबिकापुर के शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में राष्ट्र गौरव और देश प्रेम की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। वर्षा की हल्की हल्की बूंदों के बीच देश प्रेम से उत्प्रोत अंबिकापुर और आसपास के इलाकों से आए दर्शकों ने परेड ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कर परेड का हौसला बढ़ाया। कई दिनों से भारी वर्षा होने के बावजूद दर्शकों का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि परेड ग्राउंड के चारों तरफ अपनी उपस्थिति से देश प्रेम की रंग बिरंगी छटा बिखेर दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिम जाति विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम की गरिमामयी उपस्थिति में प्रातः 8:55 से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महोदय को वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण स्थल पर सम्मान पूर्वक ले जाया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन सम्पन्न हुआ। ठीक 9 बजे पूरी गरिमा के साथ ध्वजारोहण संपन्न हुआ और देश की आन बान शान तिरंगा उन्मुक्त आकाश में लहराने लगा। इसके तुरंत बाद झंडे को सलामी देते हुए पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान का वादन किया। इस प्रकार आयोजन की गरिमामयी शुरुआत के बाद माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और इसके पश्चात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। तीनों रंगों से सुसज्जित गुब्बारों का विमोचन किया गया और परेड के जवानों द्वारा हर्ष फायर किया गया। इसके बाद कदम से कदम मिलाकर परेड की शुरुआत हुई। सधे हुए कदमों और एक रूपता के साथ शानदार परेड संपन्न हुआ। परेड के बाद बारी आई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। अंबिकापुर के विभिन्न स्कूलों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया व छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शक दीर्घा का मन मोह लिया। देशभक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा। रंग बिरंगी पोशाकों और अबीर पताकाओं को देखकर लोगों में उमंग भर गया।

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला दिन के 11 बजे तक चला, जिसके बाद माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में हमने सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सपने को साकार करने के लिए शहादत दी थी, आज वही हमारा महान भारत देश हमें ऊंचाइयों पर दिखाई देता है। इस रेडियो रिपोर्ट को बनाने में तकनीकी सहयोग लोहरा राम और अरुण कुमार का, वाचन और प्रस्तुति सहयोग पौलोमी हरि का, प्रस्तुतकर्ता प्रमेंद्र कुमार।
1: संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध रायगढ़ नगर को अब औद्योगिक विकास के लिए भी स्वाधीन भारत के सपनों के गढ़ के रूप में जाना जाता है, जहां स्वाधीनता दिवस की खुशियां पसीने की अमृत बूंदों से धरा को सींचने वाले श्रमवीरों के साथ शाला जाने वाले बच्चों के चेहरों पर भी नजर आ रही थी। एक रिपोर्ट आकाशवाणी रायगढ़ की।
2: पूरे देश के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह रायगढ़ में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व संध्या से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। मुख्य कार्यक्रम शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में आयोजित किया गया था और इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे माननीय वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड निरीक्षण किया गया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा संदेश वाचन के उपरांत हर्षोल्लास और विकास के प्रतीक गुब्बारों को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा गया। हर्षोल्लास विकास और शांति का पहरुआ होता है शौर्य, और इस दिवस पर शौर्य प्रदर्शित करते हुए पुलिस के जवानों द्वारा हर्ष फायर किया गया। साथ ही एनसीसी, एनएसएस और स्काउट दलों के साथ आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा रायगढ़ जिले के वीर शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। आकर्षक मार्च पास्ट के बाद बारी थी बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जिसमें रायगढ़ जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने अपने सुरता

0: ताल चपल नृत्य और आकर्षक भाव भंगिमाओं के साथ देशभक्ति और विभिन्नताओं में एकता का उद्घोष किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक।
1: बदरा

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विशिष्ट कार्य और समारोह में विशेष प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और दलों को पुरस्कृत किया गया। इस रेडियो रिपोर्ट में तकनीकी सहयोग था पंकज धवलकर का, प्रस्तुति सहयोग था रामविलास पटेल का और कार्यक्रम में संपादन संयोजन और प्रस्तुति थी रवि आनंद की।
1: अरपा नदी के किनारे बसी न्यायधानी बिलासपुर भी आज 80वें स्वाधीनता दिवस की खुशियों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ शामिल थी। नगर की शासकीय इमारत और विभिन्न चौराहे अपनी सजावट के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियों को बयां कर रहे थे। पेश है आकाशवाणी बिलासपुर की ये रिपोर्ट।
2: चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देशभक्ति की ये कविता पुष्प की अभिलाषा की रचना 28 फरवरी 1922 को बिलासपुर सेंट्रल जेल में की और बिलासपुर सेंट्रल जेल के समीप ही पुलिस परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस टुकड़ियां, पुलिस के जवान, स्कूली बच्चे और गणमान्य नागरिकों से पूरा पुलिस ग्राउंड भरा हुआ था, जिसे 3 रंगों और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। आकाश में पंछी और तितलियां स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। मौसम सुहाना था। आयोजन स्थल में तो बारिश हुई नहीं, पर शीतल मंद हवाएं चल रही थी जो बता रही थी कि कुछ दूरी पर बारिश हो रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तोखन साहू के आगमन पर एनसीसी कैडिटों ने अगवानी की और ससम्मान मंच तक पहुंचाया और सबसे पहले हुआ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान पुलिस बैंड की धुन के साथ गाया गया। मुख्य अतिथि ने दर्शन कार से परेड का निरीक्षण किया, गणमान्य नागरिकों का भी अभिवादन करते हुए परेड की सलामी ली। साथ में थे बिलासपुर के जिलाधीश

0: संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजी श्री रजनेश सिंह। हर्ष फायर के बाद राष्ट्रपति के जयकारे के साथ आरंभ हुआ मार्च पास्ट। नेतृत्व कर रहे थे परेड कमांडर भूपेंद्र गुप्ता। केंद्रीय जेल के बैंड दल की धुन के साथ मार्च पास्ट की टुकड़ियां एक लय में मंच को सलामी देती हुई गुजर रही थी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम के बीच एक भावुक पल भी आया जब मंच पर आसीन 29 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से उनके समीप जाकर मुख्य अतिथि ने उनका अभिवादन किया। नशा मुक्त भारत के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबने नशा मुक्ति की शपथ ली। अब बारी थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने दांडी मार्च का सजीव चित्रण किया।
1: 19वीं शताब्दी भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया।
2: To all the agents, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है।
1: अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए, अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च।
0: तिरंगे की कहानी के साथ प्रस्तुति दी दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने।
3: और जब यह तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारत के ये प्रतीक चिन्ह पहचान है एक गौरवशाली भारत की।
0: LCIT उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों ने जयतु जन्मभूमि गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया।

महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की छात्राओं ने गोंडी बोली में नृत्य गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति जवारा, भोजली, गेड़ी, बस्तर दशहरा, राउत नाचा सभी को समेटकर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया।

0: पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने भारत माता की सेवा पर नाटिका पेश की।
1: चिट्ठी आ गई सर, सर चिट्ठी आई
0: है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद उत्कृष्ट कार्य हेतु कर्मचारियों को प्रशस्ति, परेड व सांस्कृतिक टोलियों को पुरस्कार वितरण के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्नता की ओर अग्रसर हुआ। आयोजन स्थल पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लोगों ने पुलिस और सैनिक की वर्दी के साथ लाए थे। यह हमारी पवित्र भावना का प्रतीक है कि हम अपने पुलिस और सैन्य कर्मियों के प्रति कितना सम्मान का भाव रखते हैं और अपने पुत्र पुत्रियों को देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। ये थी बिलासपुर जिले की स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिपोर्ट। कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया पवन थवाइत और माइकल इक्का ने। प्रस्तुति सहयोग सुनील चिपड़े, प्रस्तुति नेमी चंद साहू, संयोजन किया डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने।
2: छत्तीसगढ़ के लिए इस बार स्वाधीनता दिवस एक नया पैगाम लेकर आया है और वो है बस्तर में शांति का। बस्तर वासियों के लिए इस बार का स्वाधीनता दिवस शांति की नई सुबह के साथ विकास की नई रोशनी लेकर आया है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर के अनेक गांव में शान से लहराते तिरंगे ने जगाया है एक नया विश्वास और विकास की एक नई आस। प्रस्तुत है आकाशवाणी जगदलपुर की ये रिपोर्ट।
3: स्वतंत्रता दिवस भारत की आजादी का वो गौरवशाली दिन जो हर भारतीय के हृदय में देश प्रेम, समर्पण और एकता की भावना को

और गहरा कर देता है। ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों की याद दिलाता है जिनके त्याग और बलिदान के कारण भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति मिली। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। शहर तिरंगे के 3 रंगों से सजा था और हर ओर देश प्रेम की भावना दिखाई दे रही थी। जगदलपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल बाग के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। इसके बाद ठीक सुबह 9 बजे समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने परेड ग्राउंड में मौजूद 16 प्लाटूनों का निरीक्षण किया। पुलिस एवं सैनिक टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी। परेड निरीक्षण के दौरान बस्तर जिला कलेक्टर श्री आकाश छिकारा और बस्तर पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि की आगवानी की और फिर हर्ष फायर की गूंज के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का उत्साह और भी बढ़ गया। इसके बाद शुरू हुआ भव्य मार्च पास्ट। परेड का नेतृत्व कर रहे थे परेड कमांडर जगदलपुर के उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण भारती। उनके साथ सेकंड इन कमांडर की भूमिका में थे प्रशिक्षु सुबेदार श्री ओम प्रकाश कुमार। एक के बाद एक सभी टुकड़ियां अनुशासन और कदम ताल के साथ मंच के सामने से गुजरी। मार्च पास्ट की समाप्ति के बाद मुख्य अतिथि श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इसके पश्चात हर्ष और उल्लास के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को खुले आसमान में छोड़ा गया। देखते ही देखते ये गुब्बारे आसमान की अनंत ऊंचाइयों में विलीन हो गए। इसके बाद परेड निष्क्रमण की कार्यवाही पूरी की गई। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्लाटूनों के नेतृत्वकर्ताओं से सौजन्य भेंट की और उनका परिचय प्राप्त किया। समारोह में अगली कड़ी थी स्कूली बच्चों की शानदार प्रस्तुति की। जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर श्री बी आर बघेल के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। लय अनुशासन और उत्साह से भरपूर इस प्रदर्शन ने समारोह में मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्ति से ओतप्रोत गीत नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया।

0: समारोह के अंतिम चरण में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण के साथ ही लालबाग का ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी के साथ जगदलपुर में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का गरिमामय समापन हुआ। आज का ये दिन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना हम सभी का दायित्व भी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने वीर शहीदों के बलिदान को नमन करें और देश की एकता, अखंडता तथा प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। तो श्रोताओं, ये थी लाल बाग जगदलपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोग था पूर्णा पाठक साहू और प्रियंका सोनी का। प्रस्तुति सहयोग था शिलुपेंद्र ठाकुर का। आलेख, वाचन और प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। संयोजक थे धर्मदीप डोंगरे।
1: राजधानी रायपुर में भी स्वाधीनता दिवस की उमंग हर उस गीत में सुनाई दे रही थी जो आज सुबह से ही अनेक कार्यालयों और चौक चौराहों में गूंज रहे थे। उन इमारतों में दिखाई दे रही थी जो कल रात से ही रोशनी से सजी हुई थी। रायपुर का मुख्य समारोह पुलिस परेड मैदान में आयोजित था।

0: सुनते हैं आकाशवाणी रायपुर की ये रिपोर्ट।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में आयोजित किया गया। सुबह से छाए बादल उस वक्त छंट गए जब पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की स्वर लहरियां वातावरण में गूंज उठी। इसके बाद बैंड की धुन पर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुले वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उपस्थित नागरिकों और बच्चों ने तालियां बजाकर माननीय का स्वागत किया। इसके बाद रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और हर्ष फायर की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। फिर आया आन बान और शान का प्रतीक सबसे गौरवमयी पल। परेड कमांडर विमल कुमार पाठक के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से परेड ने मार्च पास्ट किया। सलामी ली माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने।
2: मंच की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरुष की टुकड़ी, प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर कन्हैया 10वीं वाहिनी सूरजपुर के नेतृत्व में। मंच की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला की टुकड़ी, छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी प्रशिक्षु पीसी सागर मिश्रा 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा के नेतृत्व में।
1: इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में कहा,
3: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों जय जोहार। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व मां भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धूर, आयतु महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मनखे मनखे एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है, जगत सम ध्वम सम वदत ध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: पुलिस पदक अलंकरण वितरण के पश्चात बैग पाइपर बैंड की आकर्षक धुन पर दल ने विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शन किया।

0: ताल से ताल, लय से लय, सुर से सुर मिलाते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं हमारी जांबाज ये महिलाएं।
1: अश्वारोही दल के प्रदर्शन और डॉग शो के बाद रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया।

0: इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुरस्कार वितरित किए। समारोह के अंतिम चरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया। संकलन विकास कुमार साहू, शशि प्रकाश पांडे और रमा शंकर। तकनीकी सहयोग क्रांति कुमार साहू, उदय ठाकुर और धनीराम पैकरा का, और प्रस्तुतकर्ता प्रकाश उदय।
1: इसके साथ ही स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोह की समन्वित रेडियो रिपोर्ट समाप्त होती है। वाचक दीपक हटवार, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र कुमार साहू।

0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोह की समन्वित रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:45 होने को है। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस

0: ना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्त धारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित

0: कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लात्विया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे।

0: वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights.

0: He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On nationalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from nationalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा,
2: आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में शोर फिल्म का गाना। गीत लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की अनगिनत बधाइयां। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें जिनमें युद्ध दिखाया गया है या जिनमें हीरो का ताल्लुक फौज से है।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे जो 1962 में था, वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों

आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अपने समाज और समय से प्रेरणा ली। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत को पड़ोसियों की चालों का और उनके हमलों का सामना करना पड़ा, कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा और इसीलिए सिनेमा ने भी इसे अपनी कहानियों का विषय बनाया। सन 1961 फिल्म हम दोनों, देव आनंद इस फिल्म में एक फौजी होते हैं और जिंदगी का साथ निभाते चले जाने की बात करते हैं।

0: लेकिन भारत की पहली बड़ी युद्ध फिल्म मानी जाती है चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो सन 1964 में आई। ये सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के अंतर्गत हुई रिजान ला की लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान और विजय आनंद वगैरह। एक बाकायदा युद्ध फिल्म हकीकत आज भी सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।
1: कर चले हम पिता जाने।

साथियों, सन 1973 में चेतन आनंद लेकर आए हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी और इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार।

जाहिर है कि फौज और युद्ध को भारतीय सिनेमा ने अपना विषय लगातार बनाया। सन 1975 में आई फिल्म आक्रमण, जिसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, अशोक कुमार और राजेश खन्ना। फिल्म की पृष्ठभूमि में युद्ध तो है, लेकिन इस फिल्म की कहानी रोमानियत के इर्द गिर्द बुनी गई है।

0: जब मैं पहुंचा घर पे कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा सबकी छुट्टी हो गई फिर मैंने बूट से बूट जो मारा फौजी गया जब गाँव में फौजी गया जब गाँव में।
1: गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका है जब हम शान से अपने देश के शौर्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब निकलती हैं फौजी टुकड़ियां तो देश गर्व से भर उठता है। यही परिदृश्य दिखाया गया है हमारी फिल्मों में। सन 1970 में देव आनंद लेकर आए अपनी फिल्म प्रेम पुजारी।

सन 1972, निर्देशक रामानंद सागर ने अपनी फिल्म बनाई ललकार। मुख्य सितारे थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और माला सिन्हा। ये फिल्म भारत और जापान के बीच युद्ध की

एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो सन 1967 में मनोज कुमार लेकर आए अपनी फिल्म उपकार।

सन 1982 में निर्माता शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी फौज पर आधारित अपनी फिल्म लेकर आए विजेता। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, कुणाल और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म में संगीत अजीत वर्मन का था और आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी हमारे मन को आनंद से भर देता है।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार। इस फिल्म का हीरो एक फौजी है जो अपनी निजी जिंदगी में भी जंग लड़ता है।

राय अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लूंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एलओसी कारगिल।

सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर

जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चूला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है।

साल 2007 में अमृत सागर ने युद्ध बंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लुथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन।

साल 2005 में आई फिल्म टेंगो चार्ली। ये फिल्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के संघर्ष पर आधारित है, जो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त और सुनील शेट्टी वगैरह।

साल 2019 में आदित्य धर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य सितारे थे विकी कौशल और यामी गौतम।

साल 2021 में निर्देशक विष्णु वर्धन लेकर आए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी शेरशाह। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी। साल 2020 में भारत की पहली महिला फौजी पायलट के जीवन पर शरण शर्मा ने एक फिल्म बनाई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इस फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाई थी जानवी कपूर ने। साल 2021 में एक फिल्म आई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सन 1971 के युद्ध में भुज में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप को 72 घंटों में 300 स्थानीय महिलाओं के जरिए तैयार करने के करिश्मे पर आधारित थी ये फिल्म।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें हमने की जिनमें हीरो को फौजी दिखाया गया है या ऐसा कथानक है जिसका ताल्लुक भारत की सीमाओं और उसकी रक्षा से है, युद्ध से है। ऐसी फिल्मों का सिलसिला बहुत लंबा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने मुख्य फिल्मों का जिक्र किया और उनके गाने आपको सुनवाए।

0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दीवानापन जब हदों से गुजर जाए तो इश्क इबादत बन जाता है। फिर हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता है, हर रास्ता उसी की ओर मुड़ जाता है। कहते हैं सच्चे दीवाने मंजिल नहीं देखते, वो तो सफर से ही मोहब्बत कर बैठते हैं। उन्हें खुशी इस बात की नहीं होती कि कोई उनका हो गया, बल्कि इस बात की होती है कि उनका दिल किसी के नाम पर धड़कना

0: वो कभी मुस्कुराकर हाल पूछती है तो कभी मेरी खामोशी को भी पढ़ लेती है। समझ नहीं आता ये बस अपनापन है या वो मेरे दिल की आहटें सुन लेती है। उसकी नजरों में कुछ तो राज छिपा है जो हर मुलाकात में थोड़ा और खुल जाता है। दिल कहता है ये मोहब्बत है, पर उसकी खामोशी हमेशा उलझा देती है और दिल में एक ही सवाल बार बार उभर आता है।
1: यूं ही तुम

मैं सोचता हूं क्या तोहफा दूं उसे जो उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर ठहर जाए। फूल दूं तो मुरझा जाएंगे, चांद दूं तो हर रात बदल जाएगा। फिर सोचा अपनी धड़कनों की स्याही से कुछ अल्फाज लिख दूं उसके नाम पर, या फिर वफा की खुशबू अपनी हर खुशी उसके नाम कर दूं। मेरे पास सबसे कीमती मेरा दिल था, तो आज उसी को करता हूं नाम तुम्हारे।

0: गीत, जब आना मेरे पास तो अपनी आंखों में थोड़ा सा इश्क और ढेर सारा नूर लाना, होठों पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर मेरी धड़कनें मुस्कुरा उठें, और हाँ एक वादा भी साथ लेते आना कि हर खुशी में मेरा हाथ थामोगे और हर मुश्किल में मेरा साथ निभाओगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर मुलाकात अपने आप में सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है।
1: पता

रूह तक पहुंचते हैं। मैंने तुम्हें देने के लिए ना सितारे तोड़े हैं, ना ही चांद चुराया है। मैं तो बस अपना दिल, अपना अटूट भरोसा और उम्र भर की सच्ची मोहब्बत लेकर आया हूँ। दुनिया के सबसे अनमोल उपहार बाजारों में नहीं मिलते, वो किसी सच्चे दिल की धड़कनों में बसते हैं।

दिल का नजराना पाकर मन मयूर नाच उठता है। गोरी के पैरों की पायल भी जैसे मधुर गीत गाने लगती है। लबों पर अनकही मुस्कान के फूल खिल उठते हैं। दिल की हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाने लगती है। हर मौसम सुहाना सा लगता है। हवाओं में किसी की मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है और सिर्फ पायल ही नहीं, पूरी जिंदगी प्रेम का गीत गाने लगती है।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम

0: चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो
1: जइयो
0: कहाँ
1: कहाँ
0: से
1: के हुजूर।
0: हुजूर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
3: जाए रात

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के

के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।